0: और धार्मिक इतिहास पर नवीन प्रकाश पड़ेगा। नेसर का महत्व उनके संपूर्ण त्याग की भावना में निहित है। मनसा वाचा कर्मणा भक्तिभाव से ऋषभ वाहन शिव का स्मरण, चिंतन और वस्त्र धोती कोवणम आदि के दान द्वारा निरंतर शिव के नमः शिवाय पंचाक्षर के जप के कारण नेसर को पुराण में स्थान मिला है। इसीलिए उन्हें एक उच्च कोटि का नायनमार या संत माना गया है और पेरिय पुराण में उनका एक विशेष स्थान है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: சைவம்.org-இன் ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சிவகீர்த்தனைகள். இதில் பாடியிருப்பவர் டாக்டர் எஸ் ராமநாதன் அவர்கள். ஓம் நமச்சிவாய.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामासि प्रसद्य भस्माना योनिमपश्चा पृथिवीमग्ने सक्यसृज्या मातृभिष्ट।

ृच्छे मरुतस्तावतिषुः कथमपरास्तुचेषि सत्यसुष्मान्दम्भोसन्दिरवर्तत हर्भिरहरते फलपोषयते।

पतये हर हर महादेव। ओ आदिगुरु शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी

दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के प्रसंग में आठवां श्लोक है। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथा

अभी तक पहले श्लोक से लेकर ये 7 श्लोक तक जो कुछ भी विचार हुआ है, उन सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि एकमात्र सत्ता और स्फूर्णा परमात्मा के अलावा अन्यत्र कहीं किसी में नहीं है। अन्य किसी वस्तु में न तो उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, न अन्य किसी वस्तु के अपने स्वतंत्र प्रकाशित होने की क्षमता है। यदि कोई वस्तु प्रकाशित होते हैं यानी हमें ज्ञात होते हैं, तो वो ज्ञान होने में भी परमात्मा का प्रकाश यानी परमात्मा का ज्ञान ही काम करता है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र दिख रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, तो भी उसकी स्वतंत्रता अस्तित्व में भी परमात्मा की ही सत्ता काम कर रही है। इसके बावजूद भी लोगों को ये भ्रांति होती है कि ये वस्तु स्वतंत्र सत्ता वाले हैं और स्वतंत्र ज्ञात होते हैं, स्वतंत्र प्रकाशित होने वाले हैं। ये हमें भ्रांति होती है। इन 7 श्लोकों के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसको एक सार के रूप में 8वें श्लोक में बता रहे हैं। पहले ये निष्कर्ष निकला, सुरेश्वराचार्य जी ने इसके बारे में थोड़ा संकेत किया है। प्रकाश व्यतिरेकेण पदार्थ कोऽपि नास्ति चेत् परमार्थोपदेशान्तो व्यवहार कथम भवेत्। मान लो कि पूर्व पक्ष के तरफ से प्रश्न उठा रहा है, व्यवहार को सत्य मानने वाले, जगत को सत्य मानने वाले, पदार्थों को स्वतंत्र सत्य मानने वालों की तरफ से ये प्रश्न है। वो कह रहा है प्रकाश व्यतिरेकेण, सत्ता और प्रकाश के अतिरिक्त जगत में कोई भी वस्तु का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ऐसा मानते हो तब यह मानना पड़ेगा कि एक ही वस्तु है जगत में और उसके अलावा और किसी का अस्तित्व नहीं है, ये मानना पड़ेगा। वेदांत का यही सार संग्रह है, ये वेदांत का यही मूल सिद्धांत है। पारमार्थिक एक सत वस्तु ब्रह्मा, परमात्मा, महेश्वर, आत्मा, अब जिन नामों से भी कहो दो, उस परमार्थिक एक सत वस्तु के अलावा और कोई भी वस्तु अस्तित्व में है ही नहीं। यदि ऐसा है तब परमार्थो उपदेशांतो व्यवहार कथम भवेत्। तो बंधन से लेकर मोक्ष पर्यंत और जीव को बंधन से छुटाने का उपाय, गुरु और शिष्य का संबंध, ये सब कैसे संभव होगा? कौन किसको उपदेश करेगा? कौन किसके पास उपदेश सुनने के लिए जाएगा? यदि एक वस्तु के अलावा दूसरा कोई वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है तो ये तुम्हारा वेदांत ही बेकार है, क्योंकि प्रेमपुरी आश्रम ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि किसको कौन उपदेश सुनाएगा, कौन उपदेश सुनने जाएगा? इस व्यवहार का क्या करोगे? इस व्यवहार का लोप हो जाएगा। पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न है। परमार्थ उपदेशांत, परमार्थ माने उपदेश का अंतम अंत कहां है? गुरु शिष्य भाव से उपदेश का अंत कहां होता है? एक पारमार्थिक सत्ता की प्राप्ति तक होती है, तो उसका अंत कहां जाकर होगा, इसका क्या होगा? इस रूप में उसने प्रश्न के रूप में रख दिया है। एक परमात्मा सत्ता के अलावा और कोई वस्तु यहां नहीं है, तो फिर कस्य बंधस्य मोक्षस्य, बंधन किसको होगा, बंधेगा कौन, फिर मुक्त कौन होगा? क्या वही परमात्मा खुद बंधता भी है, बंध जाता है, और वही परमात्मा खुद मुक्त होता है? तो वही परमात्मा अकेले बंध जाता है, वही परमात्मा अकेले मुक्त हो जाता है, तो मुक्त कौन करता है? वो अपने आप मुक्त हो जाता है।

0: पता है तो फिर ये गुरु शिष्य का व्यवहार किस काम का, शास्त्र उपदेश का क्या काम प्रयोजन है। मायाया लक्षणम किम स्यात् इत्येवं परिपृच्छतः। तीन प्रश्न पूर्व पक्ष ने यह आठवें श्लोक को आरंभ करने से पहले, सात श्लोक तक के प्रसंग को सुनने के बाद पूर्व पक्ष ने ये तीन प्रश्न रखा। पहला प्रश्न रखा, परमात्मा एक ही है, एक के अलावा और कुछ जगत में कुछ भी नहीं है, दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है, तो फिर मोक्ष पर्यंत उपदेश किसको किया जाएगा और कौन करेगा। दूसरा होगा, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है तो बंधन किसको होता है, क्या परमात्मा को ही बंधन होता है कि परमात्मा के भिन्न को होता है, और यदि भिन्न को होता है तो फिर परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है, यह क्यों कहा जा रहा है, और परमात्मा के अलावा यदि कोई दूसरा कोई नहीं है तो यह कहना पड़ेगा कि बंधन उसी परमात्मा को प्राप्त होता है। अब परमात्मा को भी बंधन प्राप्त होता है तो फिर जीवात्मा मुक्त होने की आशा क्यों करेगा, है? समर्थ पुरुष भी जब फंस जाता है तब उस भाव को प्राप्त होने के बाद भी फंसना पड़ता है तो जीवात्मा कहता है कि हम पहले से फंसे हैं तो फिर क्यों फेरी फंसने जाएंगे, क्यों ब्रह्म होने के बाद भी फंसना पड़ता, क्योंकि ब्रह्म फंसता है आप बता रहे हो तो फिर क्या फायदा हुआ, है? प्रक्षालनाधि पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम। कहीं कीचड़ था रस्ते में, कीचड़ था और जान रहे हैं कि कीचड़ है, और कीचड़ में पांव रखने के बाद निकलने से फिर धोना पड़ता है, तब कीचड़ में पांव पहले रखे ही क्यों, कीचड़ में पांव रखे बिना यदि निकलने की दूसरा रास्ता है तो फिर कीचड़ में ही पांव क्यों रखना, और कीचड़ में पांव रखा फिर धोना पड़ता है तो फिर क्यों रखना है। ये बात अलग है कि दूसरा उपाय ही नहीं है तो कीचड़ में पांव रख के भी जाना पड़ेगा और निकलने के बाद धोना भी पड़ेगा। जब कीचड़ में पांव रखे बिना भी आप निकल सकते हो तो कीचड़ में पांव रखना ही क्यों है। प्रक्षालनाधि पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम। बाद में जब उसको धोके हटाना ही है तो पहले से ही उसका स्पर्श ही मत करो, है ना? समझदारी तो यही है। जगत को जब बाद में जाकर इसको निषेध करना है, हटाना है, तब फिर पहले ही इसको स्वीकार क्यों करना, और आप लोग सब यही करते आ रहे हो, पहले स्वीकार करो बड़े खुशी से, बैंड बाजा बजा बजा कर, पार्टी दे दे कर, नाच नाच कर स्वीकार कर लो, और बाद में रो रो के हटाओ इसको। सभी यही करते हैं, हटाते सब है, हटता सब है, सभी हटाते हैं, सभी से सब हट जाता है, नहीं भी हटाओगे तो हटेगा वो, लेकिन जिस खुशी से तुमने इसको स्वीकार किया था क्या हटते समय वही प्रसन्नता रहती है, है? और यदि अपने आप हटाने चाहो तो हटेगा नहीं, रोना पड़ेगा ये अभी तक क्यों नहीं हट रहा है, आपके सारे प्रयत्न बेफल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इस जगत को हटाने के लिए आप रात दिन एक कर रहे हैं, अभी नहीं हट पा रहा है तो भी रो रहे हो, और तुम्हारे प्रयत्न से नहीं हट रहा है, चलो ईश्वर एक एक करके हटा देता है तो भी रोते हो कि ये चला गया वो चला गया वो चला गया, तुम्हारा रोना कभी नहीं छूटता है। बंधन स्वीकार करते समय हंसते हो और बंधन मुक्ति के लिए प्रयत्न करते उपाय करते क्यों रोते हो, छूट रहा है छूटने दो, अपने आप छोड़ना चाहिए था नहीं छुटा तो चलो प्रकृति ने छुटाया परमात्मा ने छुटा दिया, प्रसन्न हो जाओ भाई, बंधन जिस प्रसन्नता से स्वीकार किया था इससे मुक्ति भी उसी प्रसन्नता से ही करो, खुशी खुशी से विदाई करो जगत को, जागतिक संबंध को, जागतिक पदार्थों को खुशी खुशी से विदाई करो, देख लिया बहुत हो गया, भोग लिया बहुत हो गया, उपयोग कर लिया बहुत हो गया, अनुभव कर लिया, बहुत हो गया। कतिनाम सुता नलालिता कतिनाम बधूर अभुंजी। आदिगुरु शंकराचार्य जी अपनी मां को समझाते हैं, जब उन्होंने कहा कि मुझे सन्यास लेना है, मुझे आज्ञा दो तुम, ये जगत से मैं निकलना चाहता हूं, इस बंधन से मैं फंसना ही नहीं चाहता हूं, निकल जाऊंगा, प्राप्ति से पहले ही मैं निकल जाऊंगा, सन्यास लेने की अनुमति दो। मां रोने लग गई, बेटा तू सन्यास लेगा, मेरा और कौन है यहां जगत में तेरे अलावा, कोई आश्रय कोई आधार मिलेगा करके शादी किया, पति चला गया, तुम्हारा बाप चला गया, बिना पूछे चला गया, बाय बाय भी नहीं किया, हाई हाई करते हुए गया। है किया कि नहीं? कोई बाय बाय करके जाता है जाने वाला? कोई बाय बाय करके जाता है? सब हाई हाई करते जाते, हाई अब क्या होगा, हाई ये क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, घर का क्या होगा, मकान का क्या होगा, तमारो शू थसे, ले जी हाय हाय, अरे बाय बाय करो, प्रसन्नता से विदाई करो। शंकराचार्य जी की मां कहती है ना, मेरे तो तुम हो, एक आश्रय पति था वो भी चला गया, और एक तुम्हारे भरोसे में मैं जी रही हूं, और मुझे आगे का जीने का एक आधार भी तुम ही हो जब तक जीऊंगी, और तुम भी चले जाओगे। तो मां प्रसन्नता से विदाई नहीं कर रही है, बाय बाय नहीं कर रही है, हाई हाई करने लगी है। शंकराचार्य जी ने कहा कि ऐसे ये विदाई नहीं करने वाली है, कुछ खेल खेलना चाहिए, कुछ नाटक करना चाहिए। तब चले गए नहाने के लिए, वो तो कपड़ा धो रही थी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे नहा रही थी, कपड़ा धोकर फिर नहाना था कि मां थोड़ा मैं भी पानी में तैरता हूं। अच्छा बेटा जाओ खेलो, सन्यास लेने जाऊंगा तो मना किया, तो पानी में नहाने के लिए जाता हूं तो ठीक है जाओ। इन्हें कहते हैं कि डूबेगा, उतरने के लिए ना डूबने की जगह जाना चाहता है तो जाने नहीं देते, और डूबने की जगह जाना चाहता है तो खुशी से जाओ। हम लोग यही तो करते हैं व्यवहार में, इससे अलावा और क्या कहते हैं? आपका बेटा कहे कि मैं सन्यास लेने जाऊंगा हरिद्वार, तो आप मना करने लग जाओगे। अब आपका बेटा अपनी तरफ से प्रस्ताव लेकर मैंने किसी लड़की से प्रेम किया, भले ही विजातीय हो, भले ही दूसरे धर्म की हो, भले ही दूसरे गोत्र की हो, भले ही कुछ भी हो, मैंने लड़की निश्चय कर लिया मां, मुझे शादी करनी है पापा, तो खुशी से कर लो बेटा, तुम खुशी तो हम खुशी, हम राजी हो जाते हैं, विरोध करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। फंसने डूबने के जगह पर जाना चाहता है तो हम बड़े राजी से विदाई कर देते हैं, हम भी मदद करेंगे, हाँ तुमको डूबने में, हाँ। और जब डूबता है तो फिर साथ में सब रोने लग जाते हैं। तो मां ने विदाई कर दी शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी तैरते हुए गए बीच धार में, और उनके संकल्प से एक मगरमच्छ खड़ा हो गया, बड़ा भारी मगरमच्छ खड़ा हो गया, और मुख बहा रहा है और उनके पांवों को पकड़ रहा है, और जोर जोर से शंकराचार्य जी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मां बचाओ बचाओ, ये मुझे पकड़ रहा है, ये मुझे खा रहा है, निगल रहा है, मुझे बचाओ बचाओ। मां देख रही है, देखते हुए करेगी क्या, वो उसकी क्षमता से बाहर है, कूदने की हिम्मत नहीं हो रही है नदी में, क्या करेगा, बैठी बैठी रोने लगी, चिल्लाने लगी, चारों तरफ हाई गुहार किया, कोई नजदीक में नहीं है, क्योंकि एकांत नदी के किनारे में है, अब क्या करें। तो उस अवस्था में शंकराचार्य जी ने कहा, मां मेरी सन्यास लेने की तीव्र इच्छा थी, तुमने राजी खुशी से सन्यास लेना नहीं दिया, मुझे अब लगता है कि बिना सन्यास के ही मरना पड़ेगा, बिना सन्यास के मरना पड़ेगा, और इस तरह यदि मगरमच्छ के द्वारा खाकर मेरी मृत्यु होगी तो इसको शास्त्र दृष्टि से अकाल मृत्यु माना जाएगा, और इससे मेरी सदगति नहीं होगी। कोई बात नहीं है, विधि पूर्वक क्रिया से सन्यास न भी हो, तुम अनुमति नहीं दे रही हो, भले वचन से अनुमति दे दो कि बेटा तू सन्यास ले ले, क्योंकि सारा कर्म वैदिक कर्म संकल्प के द्वारा ही फलीभूत होता है। बिना संकल्प से केवल क्रियात्मक कर्म करोगे तो फलीभूत नहीं होगा, और क्रियात्मक न हो और शुद्ध संकल्प हो तो वही फलीभूत हो सकता है। तो शंकराचार्य जी ने मां को कहा कि तुम अनुमति दो, मैं संकल्प करता हूं यही पानी में कि मैं संन्यास ले रहा हूं, हाँ मैं जब संकल्प करता हुआ मरूंगा तो मेरी संन्यास फलीभूत हो जाएगी, मेरी संन्यास फलीभूत हो जाएगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं अकाल मृत्यु से मेरी दुर्गति नहीं होगी। घुमा फिराकर शंकराचार्य जी ने जब मां के सामने रखा तो मां राजी हो गई। यदि ऐसे ही बात है तो तू संन्यास लेकर मर, क्योंकि मगरमच्छी तो खा ही रहा है, मरना तो निश्चित है। तो यदि ऐसा संकल्प से ही संन्यास लेकर मरना है, मरना निश्चित है, और यदि संकल्प से तेरा संन्यास पूरा होता है तो मेरी आज्ञा है, तू बेटा तू संकल्प कर कि वो संन्यस्तम मया, संकल्प कर मैं संन्यास ले लिया, ये संकल्प कर। मेरी कोई मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरी मां नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरे बंधु नहीं है, मेरा मित्र नहीं है, मेरे सखा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, कोई जगत नहीं, कोई कुछ नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, बस शंकराचार्य जी ने संकल्प किया, मां की आज्ञा हो गई तो संन्यास ले ले। तो आज्ञा होते ही मगरमच्छ ने छोड़ दिया। सन्यासी को कौन मारेगा और कौन खाएगा भाई, है सन्यासी को कौन मारेगा कौन खाएगा, इसलिए तो सन्यासी जीते जी मरा हुआ मुर्दा है। हाँ बात समझ गए ना, वह वैदिक विधि से संकल्प से मर चुका हुआ होता है, क्योंकि सन्यास की पद्धति ही ऐसी है, विधि ही ऐसी है। अष्टश्राद्ध नांदी श्राद्ध आदि करके सब पिंड आदि कर चुकने के बाद लास्ट में अपनी ही श्राद्ध अपने हाथों से कर लिया जाता है, फिर इसके बाद विरजा हवन होता है, फिर कुछ नहीं, संकल्प ही यही होता है, क्रिया ही यही होती है। तब उसको फिर क्या खाएगा, कौन मारेगा, वो तो पहले ही मर चुका है, क्या मारेगा। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखी है, सन्यासी के कोई भी शारीरिक छोड़ने के बाद कोई विधि नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानाग्नि से पहले ही जला चुका है उस शरीर को। उस शरीर को क्या जलाओगे दोबारे, जले हुए को क्या जलाओगे, जले हुए राख को क्या जलाना है।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज हिंदी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन नायनमार पुराणम। द टाइटल इज कोचंग चोल नायनार पुराणम, प्रेजेंटेड बाय श्री सिंगापुर शंकर नारायणन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। भक्तों, अभी हम जिस दक्षिण भारतीय संत या शिव भक्त की कहानी सुनेंगे, उनका नाम कोचेंकोट चोलर है। एक कथा प्रचलित है कि तिरुचि के इसके समीप तिरुवानई कोविल में श्वेत जामुन के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। प्रतिदिन एक गजराज जब वहां से गुजरता तो नियम पूर्वक शिवलिंग को अभिषेक करता था और फूलों से अर्चना करता था। स्थान एक घने जंगल में स्थित था। एक मकड़ी के मन में विचार आया कि भगवान के लिंग शरीर पर पेड़ों के सूखे पत्ते न गिरे, इसलिए उसने एक जाल बुनकर वितान ऐसा बना दिया था। जब गजराज वहां पर आता तो मकड़ी के जाल को वहां पर अनुचित मानकर उसे ध्वस्त कर देता। मकड़ी रोज जाल बुनती और हाथी उसे नित्य ही मिटा देता था। दुखी होकर एक दिन मकड़ी हाथी की सूंड में चली गई और उसे ढसने लगी। पीड़ा से व्याकुल हाथी ने सूंड को पत्थर पर दे मारा। शिला से टकराने से मकड़ी मर गई। हाथी भी चोट खाकर गिर पड़ा तो उस पीड़ा की स्थिति में वह भी परलोक से भाग गया। चोल राजवंश के पूर्वज राजा शुभदेव जब अपनी पत्नी कमलवती के साथ अनेक पुण्यधामों की यात्रा करके लौटे तो उनके आने के बाद उनकी पत्नी रानी गर्भ से ठहर गई। रानी प्रसूति गृह में थी। प्रसव का समय समीप था। राज ज्योतिषियों ने बताया यदि पुत्र का जन्म एक घड़ी के बाद हो तो वह पुत्र तीनों लोकों का अधिपति बनेगा। रानी ने अपने पुत्र के भविष्य को मंगलमय करने की कामना से स्वयं को औंधा लटका दिया और पुत्र जन्म टल गया। उचित समय पर पुत्र का इस दुनिया में आगमन हुआ। शुभ घड़ी आने पर जब रानी ने बालक को जन्म दिया तो उस शिशु की आंखें एकदम लाल थी। रानी ने प्रेम से अभिभूत होकर कहा, इन को चिंकोणम, मेरा प्रभु लाल आंख वाला। उसके साथ ही असह पीड़ा के कारण रानी ने प्राण त्याग दिए। बेलाल कुल में चिंकन्नर समुदाय आज भी पाया जाता है। यह शिशु वही मकड़ी थी जिसने हाथी की सूंड के अंदर फंसकर मृत्यु को प्राप्त कर गई। पुनर्जन्म पाया था कोचेंकोट चोलर के रूप में। वह राजा बनने पर पूरे तमिलनाडु में अनेक मंदिर बनवाए। इस कथा के मूल में तमिल प्रदेश में व्याप्त पुनर्जन्म पर विश्वास का संकेत देता है। यह जन्म मृत्यु की एक श्रृंखला चलती रहती है। शैव धर्म की वही ही नहीं, बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। आत्मा अमर है पर शरीर नश्वर है, अतः अमर आत्मा अपना चोला बदलता रहता है। वैज्ञानिक चिंतन परिमाण देते हैं कि शरीर नष्ट होने पर आत्मा फिर भी निरंतर चलती रहती है। नवी शताब्दी के कवि माणिकवाचकर कहते हैं, मैं तृण बना, पौधा बना और फिर कीट बना, सभी जन्म लेकर क्लेश पाया है प्रभु। स्पष्ट है कि प्रत्येक जीव अपने जन्म के सुकृत या दुष्कृत के आधार पर भिन्न भिन्न जन्म प्राप्त करते हैं। इस बात का भी उल्लेख है कि इस चोल राजा कोचेंकोट चोलर को अपने पुनर्जन्म की स्मृति रही थी, इसलिए उसने अपने पूरे तमिल प्रदेश में भगवान के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर क्या संबंध लगभग 7वीं शताब्दी में हुए। उनके समय तक अनेक मंदिर नष्ट हो गए थे, फिर भी संबंधर ने शेष मंदिरों में जाकर दर्शन किए और स्तुति कांत तेवारम का गायन किया। वैष्णव भक्त तिरुमंगई आलवार ने इस राजा का उल्लेख किया है, त्रिवेद स्वरूप परमेश्वर के लिए भव्य और सुंदर स्तर मंदिर बनवाकर चोल राजा महान कीर्ति का अधिकारी बना। ऐसा कहा जाता है कि कोचेंकोट चोलर अपने सभी मंदिरों में के अंदर जाने की जगह ऐसे बनाते जिसमें कोई हाथी प्रवेश न कर सके, लेकिन आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से दक्षिण भारत में लिया जाता है। उनको एक उच्च कोटि का नायनमार माना गया है। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: ये जितने भी चीज हैं वो धर्म चक्षु से दिखाई पड़ता है, स्वर्ग नरक पुण्य पाप ये सब चर्म चक्षु से नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये कौन से चक्षु से दिखेंगे? धर्म चक्षु से। जिसके पास धर्म चक्षु होगा वह पाप को भी देखेगा और वह पुण्य को भी देखेगा, इसीलिए पाप को छोड़ेगा और पुण्य को ग्रहण करेगा। यदि न देखता होता तो छोड़ता, न देखता होता तो ग्रहण करता। और जिसके पास, इसलिए मैं हमेशा मजाक में कहा करता हूं, जिसके पास धर्म चक्षु नहीं है, खाली चर्म चक्षु है धर्म चक्षु नहीं है, उनको संडे मंडे नहीं दिखता, केवल दिखता अंडे। उनको क्या दिखता है? हैं? उनको संडे भी नहीं दिखता, मंडे भी नहीं दिखता है। क्या दिखता है उनको? चर्म चक्षु से संडे दिखेगा कि मंडे दिखेगा? अंडे दिखेगा। अंडा देखने का दृष्टि है चर्म चक्षु, और संडे मंडे तिथि वार गोत्र नक्षत्र ये देखने की दृष्टि का नाम है धर्म चक्षु। धर्म चक्षु और चर्म चक्षु ये अलग अलग चीज है। स्थूल शरीर से जुड़कर धर्म चर्म चक्षु काम करता है, ध्यान देना। स्थूल शरीर के गोलकों से मिलकर चर्म चक्षु काम करता है और सूक्ष्म शरीर से मिलकर धर्म चक्षु काम करता है। धर्म चक्षु हमेशा केवल सूक्ष्म शरीर में रहता है, हालांकि चर्म चक्षु भी चक्षुर इंद्रिय सूक्ष्म शरीर में रहता है, लेकिन देखने के लिए वो उसको स्थूल शरीर की गोलकों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके कितने नेत्र हैं बोलो? हैं? आपके कितने नेत्र हैं? एक एक है तो कौन सा है? चर्म चक्षु। वो तो अपडेट है ना आप लोगों के पास? हैं? चर्म चक्षु तो बिल्कुल ठीक है ना? अरे चर्म चक्षु ठीक नहीं हो तो जाओ कुलीन कोठारी की यहां। चर्म चक्षु तो ठीक है। अच्छा धर्म चक्षु भी है कि नहीं? यदि धर्म चक्षु न होता तो तुमको प्रेमपुरी आश्रम दिखता ही नहीं, और धर्म चक्षु न होता तो तुम यहां आते ही नहीं। यहां तुम आए किस दृष्टि से? धर्म चक्षु है, क्योंकि धर्म चक्षु मतलब उसका विषय है अध्यात्म। चर्म चक्षु का विषय केवल रूप है, तो धर्म चक्षु का विषय रूप नहीं है। धर्म चक्षु का विषय अध्यात्म है, धर्म है। धर्म चक्षु देता है कौन? चर्म चक्षु देता है कौन? चर्म चक्षु देने वाला कौन है? किसने दिया आपको ये चर्म चक्षु? ये चर्म चक्षु देने के लिए परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, ये तो प्रकृति ही दे देगी। चक्षु गोलक कहीं परमात्मा देता है? चक्षु गोलक तो प्रकृति देती है, क्योंकि ये तो फिजिकल बॉडी तो प्राकृत है, पंचभूतात्मक है, और तुम्हारी जो चक्षु गोलक है वो पंचभूतात्मक है, ध्यान देना। तुम्हारे जो आंख हैं गोलक हैं, चक्षु गोलक, वह पंचभूतात्मक है। कौन से पंचभूतात्मक? पंचीकृत कि अपंचीकृत? क्या बात, उठपटांग उत्तर देते हो। एक बोलता है पंचीकृत, दूसरा कहता है अपंचीकृत, गलत क्यों बोलते हो? जो है वो सही बोलो। चक्षु गोलक पंचभूतात्मक है, पंचीकृत पंचभूतात्मक है कि अपंचीकृत पंचभूतात्मक है? बोलो, है साहस बोलने की? ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही पंचकृत पंच महाभूत का कार्य है, तो स्थूल शरीर पंचकृत पंच महाभूत का कार्य है, तो चक्षु गोलक स्थूल शरीर का अंग होने के कारण चक्षु गोलक भी पंचीकृत पंच महाभूत का है। समझ गए कि नहीं? कोई पशु मर गया तो चक्षुर इंद्रिय लेके गया वो पशु, अब उसका शरीर वहां पड़ा है, शरीर पड़ा है तो चक्षु गोलक भी तो पड़ा है ना, और कोई गिद्ध या काग खाने लगेंगे तो शरीर का वो मांस भाग तो खाएंगे, साथ में आंख भाग भी खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि पंचभूत आत्मा का है, इसलिए मांसमय है चर्म चक्षु। लेकिन ये ध्यान रखना, जो धर्म चक्षु है, धर्म चक्षु या चक्षु इंद्रिय, चक्षु गोलक और चक्षु इंद्रिय में प्रश्न कर रहा हूं, चक्षु इंद्रिय पंचभूतात्मक है कि नहीं? चक्षु इंद्रिय, चक्षु गोलक तो पंचभूतात्मक है, पंचभूतात्मक भी पंचीकृत पंच महाभूतात्मक है, लेकिन चक्षु इंद्रिय पंचभूतात्मक है कि नहीं? तुम लोग वेदांत नहीं सुनते हो ना, इसीलिए गड़बड़ करते हो, या सुनते भी हो तो विचार नहीं करते हो, गड़बड़ करते हो। हाँ, चक्षु इंद्रिय, इंद्रिय की बात कर रहा हूं, चक्षुर इंद्रिय पंचभूतात्मक है लेकिन वो अपंचीकृत पंचभूतात्मक है। चक्षु गोलक पंचीकृत पंचभूतात्मक है तो चक्षु इंद्रिय अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक है, लेकिन धर्म चक्षु कौन से भूतात्मक है? पंचीकृत पंच महाभूतात्मक है कि अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक है? धर्म चक्षु धर्म चक्षु अपंचीकृत भी नहीं है, पंचीकृत भी नहीं है, धर्म चक्षु भूतात्मक है ही नहीं, भावात्मक है। मन पंचमोह नहीं है, मन तो उस धर्म चक्षु का गोलक है। बेटा मन क्या है? धर्म चक्षु का गोलक है मन, धर्म चक्षु अलग है। यदि धर्म चक्षु का गोलक न होता, धर्म चक्षु ही होता, तो सबके पास मन है कि नहीं? है, सबको पाप दिखाई पड़ता, सबको दिखाई पड़ता पाप है। इसलिए उस गोलक में जो धर्म का भाव है, मन में धर्म का भाव है तो उसको पाप दिखेगा, मन में धर्म का भाव है तो उसको पुण्य दिखेगा, मन में यदि पाप पुण्य का भाव नहीं है तो उसको केवल कुछ नहीं दिखेगा, न पाप दिखेगा न पुण्य दिखेगा, संडे हो मंडे हो सदा खाओ अंडे हो जाएगा। वो खाली चर्म चक्षु से काम करेगा, हाँ वो धर्म चक्षु से काम करेगा ही नहीं। मन तो है, मन है तो फिर धर्म चक्षु काम करना चाहिए ना, इसलिए मन गोलक है। किसका? धर्म चक्षु अलग है, धर्म चक्षु का गोलक मन है। जैसे चक्षुर इंद्रिय अलग है, चक्षुर इंद्रिय का गोलक अलग है, इसी तरह धर्म चक्षु अलग है, चक्षुर धर्म चक्षुर इंद्रिय का गोलक मन है, इसलिए वह भावमय है, वह पंचभूतात्मक नहीं है, भावात्मक है। और ये भावात्मक चक्षु धर्म चक्षु की उत्पत्ति कहां से होती है? किसी भूतों से नहीं होती है, वो प्राकृत नहीं है, धर्म चक्षु प्राकृत नहीं है, इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं चर्म चक्षु प्राकृत है। प्राकृत किस लिए? चक्षु गोलक भी प्राकृत है, चक्षु इंद्रिय भी प्राकृत है। क्या समझे बोलो? चक्षु गोलक प्राकृत कैसे? पंचकृत पंच महाभूत का अंग है। चक्षु इंद्रिय प्राकृत कैसे? तो अपंचकृत पंच महाभूत का कार्य है। पंच महाभूत चाहे पंचकृत हो चाहे अपंचकृत हो, प्रकृति का कार्य है, इसलिए प्राकृत है। लेकिन धर्म चक्षु प्रकृति से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वो अप्राकृत है। क्या समझे? वह संस्कृत है, प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है, वह संस्कृत है। संस्कार जैसे हो गया, जिसको जैसा संस्कार मिला उसी संस्कार से उनकी दृष्टि बनती है। कौन सी? धर्म चक्षु बनता है। इसीलिए धर्म चक्षु का मूल कारण है शास्त्र। धर्म चक्षु का मूल कारण क्या है? शास्त्र और पुरोहित। हाँ, धर्मशास्त्र का मूल कारण है शास्त्र और पुरोहित। हम गुरु को इतने घटिया नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि धर्म का उपदेश करना गुरु का काम ही नहीं है। ध्यान दो, धर्म का उपदेश करना तो धार्मिक व्यक्ति का काम है, गुरु का काम नहीं है। और विडंबना यह है कि आज गुरु के पास जाकर धर्म की बात पूछते हैं। अरे भाई, गुरु का काम तो ज्ञान देना है, ज्ञान का उपदेश करना है, धर्म का उपदेश करना है। आज गुरुओं को धर्म का उपदेश क्यों करना पड़ रहा? कि क्योंकि तुम लोगों का जो जिम्मा था धर्म का उपदेश करने का, तुम लोग निकम्मे हो गए, तो धर्म का उपदेश का काम भी गुरु के मत्ते आ गया। इसलिए आज गुरु, जितने भी गुरु बनकर घूम रहे हैं, वह ज्ञान की बात कम करते हैं, धर्म की बात ज्यादा करते हैं। ज्ञान की बात कम करते हैं, सुन लो, जितने भी तुम गुरु बनकर घूम रहे हैं, खाली धर्म की बात कर देंगे, ज्ञान की बात कोई नहीं करेगा। धर्म का उपदेश तो माता पिता और पुरोहित, इनका काम है भाई। धर्मशास्त्र पढ़ो, धर्म का उपदेश करो, है देख लो। लेकिन तुम लोग आजकल निकम्मे हो गए। अपने बच्चों को तुमको शिक्षा देनी चाहिए थी, तुम लोगों ने धर्मशास्त्र का शिक्षा नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? तुम लोगों ने सोचा कि धर्मशास्त्र का उपदेश तो, क्योंकि शिक्षा का कार्य, शिक्षा जो है स्कूल में मिलता है, तो अपने बच्चों को स्कूल में डाल दो तो सब कुछ स्कूल में मिलता है। तो तुम्हारी भ्रांति क्या हो गई? धर्म का उपदेश भी स्कूल करेगा, स्कूल धर्म का उपदेश नहीं करता है। हाँ, स्कूल केवल शिक्षा का उपदेश करता है, संस्कार का उपदेश नहीं करता है। और तुम लोग समझते हो कि बच्चे को स्कूल में डाल दो तो सब कुछ, मेरा बच्चे को वह स्कूल कंप्लीट कर देगा। क्या कंप्लीट करेगा? स्कूल कभी जीवन के संपूर्ण शिक्षा का उपदेश दे ही नहीं सकता है, है? कल भी एक चर्चा हो रही थी, आज सभी लोग यही चाहते हैं, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, समय सापेक्षित शिक्षा, उच्च शिक्षा अपने संतति को अवश्य देनी चाहिए। सभी लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बोलो? सभी लोग, सभी लोगों का यही लक्ष्य है, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को पढ़ानी चाहिए। जैसा भी हो बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो, तुम्हारा बच्चा मूर्ख न रहे। और हम सब क्या करते हैं? वही करते हैं। इसलिए हम स्कूल में जितना फीस देना पड़े भी देते हैं, बच्चों को स्कूल के जिम्मा लगा देते हैं और पैसा दे देते हैं, समझे नहीं? और स्कूल तुम्हारे बच्चों को भर्ती करता है और तुमसे पैसा लेता है, केवल शिक्षा का पैसा लेता है। किसका? एजुकेशन का। इसीलिए शिक्षा वो देता है, सभी स्कूल शिक्षा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना ज्यादा फीस लेंगे उतने अच्छा शिक्षा देंगे। आजकल यही प्रोफेशनल चल पड़ा है कि नहीं, बोलो? यही ना चल पड़ा है। लेकिन किसी स्कूल ने शिक्षा के अलावा संस्कार दिया हुआ कोई स्कूल आज मिलेगा नहीं? मिलेगा, क्योंकि हमने भी शिक्षित बनाने के लिए स्कूल में भर्ती किया है, संस्कारित बनाने के लिए भर्ती नहीं किया है। हमने मास्टर को, स्कूल को फीस शिक्षा का दिया है कि संस्कार का भी दिया है? बोलो, हाँ? हमने अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का फीस दिया है, भरा है, कि संस्कारित बनाने का फीस भरा है? हाँ? मुझे तो नहीं लगता संस्कारी बनाने के लिए स्कूल में भर्ती किया हो तुम लोगों ने। संस्कार के लिए फीस दिया हो हमको तो नहीं लगता भाई। क्योंकि शिक्षा के लिए फीस दिया है, उन्होंने भी शिक्षा के लिए फीस लिया है, शिक्षा दिया है लेकिन संस्कार नहीं देते। आज संस्कार देने के लिए स्कूल में कोई कुछ एक्शन करता है मास्टर, थोड़ा संस्कारी मास्टर होगा तो शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और संस्कार की बात जब करेगा तो उस संस्कार के अनुशासन के क्रम में एक थप्पड़ मारेगा। बोलो क्या मारेगा, मारेगा कि नहीं? अनुशासित करना होगा, संस्कारी करना होगा तो थप्पड़ मारना पड़ेगा कि नहीं? थप्पड़ मारेगा तो बच्चा रोता हुआ घर में आएगा तो तुम लोग क्या करते हो पता है? तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए पैसा नहीं दिया है, पढ़ाने के लिए पैसा दिया है। तुम लोग ये जवाब दोगे कि नहीं स्कूल को, टीचर को? हैं? बोलो ईमानदारी से बोलो। आज सब विश्व में सभी स्कूल वाले ने एक नियम बना दिया कि हमारा काम बच्चों को पीटना नहीं, पढ़ाना है। मतलब क्या हुआ? खाली पढ़ाओगे तो शिक्षित बनाओगे लेकिन संस्कारित नहीं होगा। संस्कार के लिए तो अनुशासन में लाना पड़ेगा, अनुशासन के लिए पीटना भी पड़ेगा, लेकिन पीटते ही कानून बना दिया मास्टर अब पीट नहीं पाएगा। हमारे जमाने में क्या था, हमारे गुरुकुल में क्या था? हमारे गुरुकुल में शिक्षा के लिए पैसा नहीं लिया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, हमारा स्कूल, हमारे गुरुकुलम, हमारे प्राचीन भारतीय विद्या शिक्षा की परंपरा में क्या थी, विद्यार्थी को शिक्षित बनाने की अपेक्षा संस्कारी बनाना जरूरी है। पहले हम संस्कारी बनाते थे फिर उसके बाद हम शिक्षित बनाते थे। और आज क्या होता है बोलो, आज क्या होता है? पहले शिक्षित बनाते हैं, संस्कारी बना दें बाद में तो गनीमत थी, बाद में संस्कारी बनाने का काम उनका है ही नहीं, क्योंकि रोक लगा दिया, पीट नहीं पाओगे, डांट नहीं पाओगे। ले जी, हा एक स्कूल में किसी सनातनी का बच्चा घर में पूजा हुआ, उसने मां ने तिलक लगा दी भगवान के प्रसाद का, वो तिलक लगाए ही स्कूल चला गया तो टीचर ने पीटा मारा, कह दिया कि तिलक लगा के स्कूल में नहीं आ सकता है, कानून बना दिया हमारे स्कूल में ये तिलक टिक्का लगा के नहीं आ सकते हो। मतलब क्या हुआ, संस्कार का कोई जगह नहीं हमारे स्कूल में, ये संदेश दिया गया कि नहीं बोलो तो इस नियम से? तो आज कोई स्कूल संस्कार नहीं देता है, तो विडंबना क्या हुआ, न घर में हम देते हैं न स्कूल में कोई देता है। परंतु क्या, शिक्षित होकर पढ़े लिखे होकर आते हैं, है न अभिवादनशीलता है, न विनम्रता है, न अनुशासन है, है कुछ नहीं, उद्दंड होकर आते हैं, क्योंकि शिक्षित तो है, संस्कार है ही नहीं। तो धर्म चक्षु संस्कार से प्राप्त होता है। कौन से संस्कार से? धर्म शास्त्र के माध्यम से धर्म चक्षु की प्राप्ति होती है, यही कारण है। धर्मशास्त्र अलग अलग हैं, जिसने जिस धर्मशास्त्र के माध्यम से जो संस्कार दी वही उसका धर्म चक्षु बन गया। समझ गए कि नहीं? जैनियों ने जैन धर्म के शास्त्र के द्वारा अपने बच्चों को संस्कारित किया और क्या कहा, बटाटा नहीं खाना। तो यदि धर्म चक्षु, जैन धर्म का चक्षु उसके पास विकसित हुआ होगा तो वह बटाटा खाएगा? बोलो। और क्योंकि जैन धर्म के अनुसार कह दिया कि दही नहीं खाना, और यदि उसका बेटे के पास जैन धर्म का दृष्टि, धर्म चक्षु यदि होगी तो दही खाएगा, क्योंकि उस धर्म के शास्त्र के आधार पर तुमने उसको संस्कारित दी की और उसको धर्म चक्षु दिया, तो वह सूर्य अस्त होने के बाद नहीं खाना कहा तो क्या वो खाएगा? है ये देख लो। और एक मुसलमान क्या कहेगा, उसकी अपनी अलग दृष्टि है, क्योंकि उनके धर्मशास्त्र अलग है और उसी धर्मशास्त्र के अनुसार एक मुसलमान अपने बच्चों को संस्कार देंगे, मुल्ला मौलवी आदि अपने बच्चों को वो संस्कार देंगे, तो उनकी धर्म चक्षु मुस्लिम धर्म चक्षु होने के कारण, क्योंकि वो चक्षु कुरान से आया है। और ये क्रिश्चियन अपने बच्चों को जो संस्कार देगा वो बाइबिल के आधार पर देगा, तो उनकी धर्म चक्षु उसी प्रकार के होगी। चर्म चक्षु प्राकृत होने के कारण सभी के समान हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो। चर्म चक्षु प्राकृत है, किसी धर्मशास्त्र से दिया नहीं, इसलिए सभी को लाल फूल लाल ही दिखेगा। समझे कि नहीं है? लाल फूल लाल ही दिखेगा, सफेद सफेद दिखेगा, पीला पीला दिखेगा, चाहे मुसलमान हो चाहे जो। चर्म चक्षु सबके समान है, लेकिन धर्म चक्षु में अंतर है। धर्म चक्षु में क्या है? अंतर है। हाँ, क्योंकि अंतर होने में कारण क्या है? धर्म चक्षु को विकसित करने के धर्म शास्त्र अलग अलग हैं, और उन अलग अलग शास्त्रों से दिया गया होने के कारण धर्म चक्षु स्वतः अलग अलग हो गए हैं। हम तो मांस खाने के लिए भी निषेध कर रहे हैं ना, हमारा शास्त्र तक कर रहा है कि नहीं? सनातन का शास्त्र मांस खाने के लिए भी निषेध कर रहा है, कर रहा है कि नहीं बोलो? और मुसलमान तो मांस खाने के लिए निषेध नहीं करता, परिणाम क्या हुआ? उनका धर्म हिंसा पर आधारित हो गया। उनका धर्म बोलो हिंसा पर आधारित हुआ कि नहीं? भगवान को तो कुर्बानी दो, यहां से धर्म शुरू हो गया। बकरी ईद के दिन जितना बड़ा कुर्बानी दोगे उतना ही खुदा प्रसन्न होगा, होगा कि नहीं बोलो? हैं? होगा, उनका शास्त्र कह रहा है, इसलिए कुर्बानी दी जाती है। गाय का कुर्बानी दो, भैंस का कुर्बानी दो, ऊंट का कुर्बानी दो, बकरे का दो, काटो, भगवान के लिए कुर्बानी करो। नहीं तो बकरी ईद क्यों बनाया बोलो? उन्होंने, हमने बनाया, आप लोगों ने बनाया है? बनाया है? अब उन लोगों के देखो, रोजा का एक महीना होता है, दिन में नहीं खाना कहा धर्मशास्त्र ने, तो दिन में नहीं खाते, दिन भर पानी भी नहीं पिएंगे, और सूर्य अस्त के बाद मांस भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, सर्वभक्षी हैं। क्योंकि कुरान ने निषेध नहीं किया है, कुरान ने दिन में पानी नहीं पीना, कह दिया है तो दिन में पानी नहीं पीना। हा, दिन में खाना नहीं खाना तो कह दिया दिन में खाना नहीं खाना। तो उनकी दृष्टि में दिन में खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, वही धर्म है, है? और रात में कुछ भी खा लो, मांस खाओ, मटन खाओ, लहसुन खाओ, प्याज खाओ, लेकिन दिन में नहीं खाना कुछ, वो धर्म है, उनको वही दिखता है। तो कितने हो गए दृष्टि? एक चर्म चक्षु, दूसरा धर्म चक्षु। मुसलमान को भी स्वर्ग नरक दिखता है, पुण्य पाप दिखता है, लेकिन वो पुण्य पाप की परिभाषा उनके धर्म के आधार पर करते हैं। हमारे धर्म के आधार पर करते हैं क्या? हैं? क्यों अंतर हुआ धर्म चक्षु में? क्योंकि शास्त्र अलग अलग हो गए धर्म शास्त्र, इसीलिए दृष्टि में अंतर आ गया, ये देख लो। इसी प्रकार के क्रिश्चियन का तो धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र स्थायी नहीं है, बदल भी जाता है। बदलता है कि नहीं बोलो? धर्मशास्त्र का भरोसा नहीं है, स्थायी नहीं है, बदल भी जाता है। पहले हिंदू के संस्कार से, शास्त्र से उसको धर्म दृष्टि दी गई थी, धर्म चक्षु था, पूरा धार्मिक था, वैदिक सनातन धर्म के आधार पर। अब वो किसी कारण से मुसलमान बन गया तो अब वो हिंदुओं का धर्म दृष्टि चक्षु चला गया। अब कौन सा चक्षु आ गया? मुस्लिम धर्म चक्षु आ गया, ये देख लो। कोई जैनी मान लो किसी कारण से मुसलमान बन गया, कोई सनातनी बन गया, जैनी हिंदू सनातनी जब तक जैन था तब तक तो बटाटा भी नहीं खाता था। अब बोलो वो जैन यदि मुसलमान बन गया तो गाय का मांस खाएगा कि नहीं, पाप मानेगा उसको, बदल गया कि नहीं बोलो, धर्म चक्षु बदल गया कि नहीं। इसलिए धर्म चक्षु का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए, चर्म चक्षु का भी भरोसा नहीं है कब बिगड़ जाए, चर्म चक्षु का भी भरोसा नहीं है कब बिगड़ जाए। इसके अलावा एक तीसरा नेत्र है, कौन सा था मालूम है? ज्ञान चक्षु। ये तीसरा चक्षु है ज्ञान चक्षु। हां, ज्ञान चक्षु न प्राकृत है न संस्कृत है। ज्ञान चक्षु प्राकृत भी नहीं, प्रकृति का दिया हुआ भी नहीं। ज्ञान चक्षु धर्मशास्त्र का दिया हुआ नहीं है, ध्यान देना। धर्मशास्त्र ज्ञान चक्षु नहीं देते। ज्ञान चक्षु देने वाला शास्त्र कौन है? वेदांत शास्त्र और गुरु। धर्म चक्षु देने वाला गुरु नहीं, ज्ञान चक्षु देने वाला गुरु, धर्म चक्षु देने वाला माता पिता और पुण्य पंडित पुरोहित, और धर्म चक्षु देने वाला प्रकृति, ज्ञान चक्षु देने वाला गुरु। ज्ञान चक्षु के बाद फिर और चक्षुओं की कोई उपयोगिता नहीं। ज्ञान चक्षु एक बार आ गया आपका ठीक हो गया, खुल गया, हम ध्यान देना, ज्ञान चक्षु एक बार खुल गया आपका, फिर वह बदलता नहीं। ज्ञान चक्षु एक बार खुल गया फिर वह बदलता भी नहीं, ज्ञान चक्षु एक बार खुल गया वह नष्ट भी नहीं होता, बदलता भी नहीं। यही तो आत्यंतिक दुख त्रय की निवृत्ति हो जाएगी। तत्त्वमसि, ये देख लो, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये तीन नेत्र भगवान शिव के हैं। शिव के कौन कौन सी हैं? चर्म चक्षु भी ठीक काम कर रहा है पूरा का पूरा, और धर्म चक्षु भी पूरा काम करता है, और ज्ञान चक्षु भी शिव जी का तो पूरा काम कर रहा है, बिगड़ केवल जीव जी का बिगड़ रहा है। कौन सा चक्षु बिगड़ रहा है? जीव जी का। ज्ञान चक्षु खुला ही नहीं है। हमने देखा एक आश्रम में, हरिद्वार में बड़ा एक खेत था, फार्म था, तो वहां एक कुत्ता पाल रखा था, तो कुतिया भी थी, कुतिया ने बच्चा दिया, तीन चार बच्चे एक साथ हो गए, तो बड़े जोर जोर से रोने लग गए वो बच्चे कुतिया के। हमने जाके देखा तो अभी अभी पैदा हुए थे बेचारे, आंख तो बंद, अभी अभी पैदा हुए थे, आंख खुले ही नहीं थे बेचारे, आंख बंद का बंद, और देख ही नहीं रहे। तो दो तीन दिन के बाद उनकी आंख खुली, तब वो बच्चे लोग, वो कुतिया के बच्चे तब देखने लग गए, दो तीन दिन के बाद उनकी आंख खुली। इसी तरह हमारा अब कब खुलेगा पता नहीं। कौन सा? ज्ञान चक्षु। हमारे ज्ञान चक्षु बंद है, ज्ञान चक्षु तो है खुले नहीं है। और ये जो उपक्रम है क्या है? ज्ञान चक्षु खोलने का उपक्रम है, और ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा, इन सब चार कृपाओं के माध्यम से ये ज्ञान चक्षु खुलता है। भगवान करे आपकी ज्ञान चक्षु जल्दी खुल जाए। बोलो आप क्या चाहोगे? मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं, आपके सामने एक विकल्प रखता हूं। चर्म चक्षु हमेशा ठीक रहे ये चाहते हो कि भले ही चर्म चक्षु बिगड़ता है बिगड़ जाए, ज्ञान चक्षु जल्दी खुल जाए ये चाहते हो? अच्छा, ज्ञान चक्षु खुल जावे तो फिर चर्म चक्षु की आवश्यकता रहेगी कि नहीं? यदि तुम कहते हो कि ज्ञान चक्षु खुल जाने के बाद चर्म चक्षु की तो आवश्यकता रहेगी महाराज, फिर कुलीन कोठारी के यहां तो जाने लगोगे, तो ज्ञान चक्षु की कोई उपयोगिता नहीं है। वो यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नैव च संतुष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये ज्ञान चक्षु खुलने की बात है, और ज्ञान चक्षु की बात गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है। कौन से अध्याय में है? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। कोई तीसरा कहता है, कोई दूसरा कहता है, अब बोलो कितने कौन सा अध्याय? पंद्रहवें अध्याय में भगवान ने न चर्म चक्षु की चर्चा की।
0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: इसी वासना को यदि हम भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं या सत्संग स्वाध्याय प्रवचन में लगाते हैं, तो यही जो हमारी वासना है ना, ये वासना उपासना बन जाती है, और यही जो हमारी मन की वृत्ति वासना विषय से जुड़ जाए ती बंधनकारी हो जाती है। एक ही मन का वृत्ति प्रवाह है, उस वृत्ति प्रवाह का विषय से संबंध जुड़ना ही खतरनाक है, बंधनकारक है, दुख को उत्पन्न करता है। और वही हमारे अंतःकरण की वृत्ति यदि सच्चित आनंद परमात्मा से जुड़ जाए तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो संसार है स्वप्नवत स्पष्टम, आत्मा अद्वैतो सनातनः। आत्मा अद्वैत है, सनातन है, और सभी लोग आत्मा को पाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो अपनी आत्मा को न पाना चाहे। आत्मा का अर्थ हुआ सत्चित आनंद। सभी अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, सभी ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हैं, जीवन में सभी रोशनी चाहते हैं। रोशनी का नाम ही ज्ञान है, पर कैसी रोशनी हो? रोशनी को ही वेदांत की भाषा में ज्योति कहा गया है, प्रकाश कहा है। एक है विषय का प्रकाश, दूसरा है आत्म प्रकाश। विषय का प्रकाश क्षणिक है, परंतु आत्म प्रकाश निरपेक्ष है, स्थायी है, जिसके द्वारा पूरा संसार भाषित हो रहा है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उस आत्म ज्योति के भाषित होने के बाद ही इस संसार के सारे दृश्य, सारे पदार्थ भाषित होते हैं। वह न हो तो हमारी आंखें देख नहीं सकती है। शरीर स्वस्थ है, युवा है, प्रौढ़ है, जैसी आत्म ज्योति शरीर से निकल जाती है तो हम उसको शव कहते हैं और मिट्टी का ढेर कहलाता है। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक यह तमाम व्यवहार हो रहा है। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा भांजा है, यह मेरा भतीजा है, यह मेरे पति देव है। ये तमाम व्यवहार का आस्पद, आस्पद बोलते हैं आश्रय, तमाम व्यवहार का आश्रय भी आत्म ज्योति ही है, परंतु अज्ञानी आत्म ज्योति को भुला करके इस 3.5 हाथ का जो आकार प्रकार वाला शरीर है इसको ही सर्वस्व मान करके व्यवहार करता है। जो पर्दे के पीछे, पर्दे मतलब कि इस चमड़ी के अंदर जो आत्म ज्योति है जिसका नाम विशिष्ट चैतन्य है। सामान्य चैतन्य तो सबका आश्रय है, सामान्य चैतन्य अविद्या का भी आश्रय दाता है और विद्या का भी। सामान्य चेतन पर ही ये आपके जीवन की अविद्याएं रहती है और विद्या भी है, परंतु विशिष्ट चेतन अविद्या को नष्ट करता है। जैसे कि ये सामान्य सूर्य की रोशनी है, यह तो ऊर्जा प्रदान करती है, पर यही सूर्य की रोशनी किसी लेंस से, कांच से विशिष्ट हो जाए तो फिर आग लग जाता है। ऐसे ही अंतःकरण की जो वृत्ति है, वही वृत्ति यदि ब्रह्माकार हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति जब बन जाती है, उस वृत्ति पर आरूढ़ जो चैतन्य है, ब्रह्माकार वृत्ति पर आरूढ़ जो चैतन्य है, वह तो हमारी अविद्या का, ज्ञान का ध्वंसक है, नाश करने वाला है,

तो डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर के उस विद्या को सीखना पड़ेगा। मास्टर बनना है तो मास्टर के पास जाना पड़ेगा। वकील बनना है तो वकालत की विद्या पढ़नी पड़ेगी। अब आप पंसारी को दुकान पर चले जाओ, कहो कि मुझे दवाई चाहिए, मैं बीमार हूं, तो दवाई देगा। ऐसे आपको आत्मा का साक्षात्कार करना है तो जहां पर इस विद्या का चिंतन चलता हो वहां पर आपको शरण लेनी पड़ती है। आज भी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिस कला को उसे सीखना होता है उस कला के जानकार के पास, कलाकार के पास, कारीगर के पास जाता है और सब कुछ दे करके उससे वह विद्या हासिल करता है। ऐसी आत्मविद्या को उपलब्ध होना है तो आत्मवेत्ता ज्ञानी के पास आपको जाना पड़ेगा और वह यह काम बहुत सहज कर दिया है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वनाम धन्य है ना प्रेमपुरी जी महाराज, जिन्होंने बंबई जैसी जगह में, जिसको लोग कहा करते हैं ये मोहमय नगरी है, पर वास्तव में ऐसी है नहीं, ये तो अपनी दृष्टि है। हमने आपको पहले बतलाया था ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। शास्त्रों के अनुसार इसका नाम मुंबापुरी है, यंबा की पुरी है, यहीं से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। सागर है ना यहां पर मुंबई में, सागर तनया लक्ष्मी है और सागर से धन्वंतरी उत्पन्न हुए, सागर से अमृत कलश उत्पन्न हुआ और सागर से हलाल बीज भी पैदा हुआ। सागर सब कुछ हुआ ना, पहले तो हलाल बीज निकला, हलाल बीज के बाद में एपिक्रम से जो है हलाल बीज का संहार भगवान शंकर ने पान कर लिया। तो देखो ये जो बंबई है ना, ये जो है अज्ञानियों के लिए तो मोहमय नगरी है, अज्ञानी है, जो विषयी है, पामर है, उनके लिए सचमुच मोहमय नगरी है। परंतु आप जैसे, हम लोग जैसे लोगों के लिए, सद्भक्तों के लिए, ज्ञानियों के लिए, ज्ञान पिपासुओं के लिए मुंबापुरी है। अंबा का अर्थ है ब्रह्म विद्या। केनोपनिषद में जहां प्रसंग आता है इंद्र का संवाद, वहां पर उमा का अर्थ किया है ब्रह्म विद्या। उसी ब्रह्म विद्या के द्वारा इंद्र ने आत्मा का साक्षात्कार करके अमरता को प्राप्त किए। ऐसे इसी समझो कि मुंबापुरी में आज से 50 वर्ष पूर्व स्वनाम धन्य, जिनका हम लोग जो है स्वर्ण निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, पधारे और ऐसा कल्प तरु लगाया, इस कल्प तरु के नीचे बैठ करके श्रोता वक्ता दोनों ही अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तरु में वृक्ष में बड़ा भारी अंतर है। वृक्ष शब्द की व्युत्पत्ति ओ वृष्टु छेदने धातु है, ओ वृष्टु छेदने से वृक्ष बनता है जिसका छेदन हो, और तरु शब्द का अर्थ त्रि संप्लवन तारणयो धातु है, जो है दूसरे के कामनाओं की इच्छाओं को परिपूर्ण करे और संसार से पार लगाए तारे, उसका नाम तरु है। ये जो प्रेमपुरी आश्रम एक कल्प तरु है, इसके जो है बीजारोपण करता जो स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज हैं, ऐसे कल्प तरु को यहां पर लगाया जिसके नीचे बैठ करके हम अपने जीवन के सभी कामनाओं को ही परिपूर्ण करते हैं और साथ में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। स्वाध्याय से, प्रवचन से सब कुछ उपलब्ध होता है। लोगों के मन में बड़ी भारी भ्रांति है। लोग क्या सोचते हैं कि स्वाध्याय प्रवचन तो निठल्ले लोगों का काम है, जिनको अब कोई संसार की जवाबदारी नहीं, जिम्मेदारी नहीं, ऐसे लोगों के लिए स्वाध्याय प्रवचन है। परंतु भगवान पतंजलि जी स्वयं कहते हैं स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः,

0: स्वाध्याय से अपने इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है और हमारी सारी इच्छाएं परिपूर्ण होती हैं, चाहे आपके धन की इच्छा हो या किसी युवक की नौकरी नहीं लग रही नौकरी उसकी लगनी हो या लड़की का ब्याह नहीं हो रहा ब्याह कराना हो, जितनी भी कामनाएं हैं ना, आज सबसे बड़ी तीन कामना है, नौकरी, विवाह और तीसरी क्या है, रोजगार धंधा। तो सब कुछ इससे संभव है। अर्जुन भी यही समझता था, अर्जुन यही समझते थे कि जो है हम भिक्षाटन करके आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कह भी दिया कि इस युद्ध रूपी संग्राम से बढ़िया भिक्षाटन करना, पर भगवान ने क्या किया, आत्मज्ञान का उपदेश दिया। अशोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादा च भाषसे गतासु न गता सोच नानु सोचन्ति पंडिता। इस प्रथम श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रज्ञावाद पर कुठारा घात किया है, कारण नानु सोचन्ति पंडिता और प्रज्ञावादा च भाष्य, देखो दो शब्द का प्रयोग है कि प्रज्ञावादा च भाष्य का अर्थ है कि तुम बुद्धिमानों की तरह से बात कर रहे हो परंतु बुद्धिमान नहीं हो। तो अर्जुन भी अपने जमाने का बड़ा भारी प्रज्ञावादी था, जिसको हम बुद्धिवाद कहते हैं ना आजकल। ये बुद्धिवाद लोग क्या सोचते हैं कि ये जो है ना स्वाध्याय प्रवचन तो जिसको कुछ काम नहीं धंधा नहीं उनके जीवन का है, परंतु जब अर्जुन को भगवान ने गीता रूपी आत्मज्ञान को उपदेश दिया तो अर्जुन संग्राम को स्वीकार किया, जो अर्जुन भगोड़ा बन रहा था। ऐसी हमारे जीवन में यदि अधिक नहीं तो 24 घंटा में एक घंटा भी आप समय निकाल करके प्रेमपुरी आश्रम पधारे, स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करें, तो जो हमारी ये जो प्रज्ञावादिता है इसमें निखार आएगा। जो हम लोग बुद्धिवाद से देह को ही सर्वस्व मान रहे हैं, इस शरीर ही सब कुछ है, देह ही आत्मा है, ऐसा मान करके जो हम लोग तमाम व्यवहार कर रहे हैं, जब आप स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करेंगे तो आपको यह ज्ञान उपलब्ध होगा कि शरीर कुछ भी नहीं, इस शरीर व्याध्यारोपित है आत्म ज्योति के ऊपर। ये जब तक आत्म ज्योति है तभी तक शरीर, इंद्रियां अपना सारा काम सुचारू ढंग से कर रही हैं। जिस दिन आत्म ज्योति शरीर से जुदा हो जाए वो दिन तमाम व्यवहार बंद हो जाएंगे। व्यवहार तो बंद हो जाएंगे, आपके अपने लोग भी जो है ना बस तुरंत कहेंगे ले जाओ इसको जलाओ शमशान में। जब तक नहीं जलाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, तुरंत जलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो तमाम व्यवहार का आस्पद है आत्मा, उसी आत्मा की जानकारी आपको स्वाध्याय और प्रवचन के द्वारा श्रवण करने को मिलता है। और इसका परम श्रेय जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूं, स्वनाम धन्य महाराज श्री का है, उन्हीं की स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं। स्वर्ण के साथ निर्वाण सब जुड़ा हुआ है। आपने विचार किया निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण शब्द का शास्त्रीय व्युत्पत्ति है निरशब्द और वाण, दो शब्द हैं। निरशब्द का अर्थ है निर्गत अविद्यादय वाणायस्मात्, अनादिकाल से हमारे अंतःकरण में अविद्या वासना कामना का बाण चुभा हुआ है। ये अनादि काल से है, आज और कल से नहीं। आप इस अविद्या वासना कामना के कारण से, कामना भी एक दो नहीं हजारों हैं। छोटा बच्चा होता है 2-3 वर्ष का, वह मात्र खेल कूद में मस्त होता है। बड़ा हुआ पढ़ने लगा, पढ़ने के बाद जब साक्षर हो गया तो कामना होगी ब्याह होनी चाहिए, धन होना चाहिए, मकान होना चाहिए, न जाने इतनी कामनाएं होती है, जिसको भगवान ने गीता में कह दिया है, आशा पास सतैर बद्धा काम क्रोध परायण, यन्ते काम भोगार्थम अन्याय नाथ संचयान। ऐसी आशाएं कामनाएं हैं, वही हमारे अंतःकरण में चुभी हुई है, उनका नाम है वाण। क्योंकि व्याकरण में रलयुर ववयुर अभेद होता है, रकार और लकार, और वकार बकार का अभेद है। जैसे किसी आदमी के दो दो नाम नहीं होते हैं, वैसे रकार लकार और वकार बकार अभेद है, दो चीज नहीं है। तो वाण शब्द का अर्थ है बाण। जैसे किसी व्यक्ति को बाण लग जाए, बाण जो है ना ऐसे नुकीले होते हैं, सीधा शरीर में ऐसे जाता है, पर जब आप खींचेंगे ना तो सीधा नहीं निकलता है, वो पूरा शरीर का लेकर आता है, जो भी है हाड़ मांस चाम। तो जो हमारे शरीर में मन में अंतःकरण में अविद्या वासना और काम का बाण चुभा हुआ है, वह जिसके द्वारा निकल जाए वही न है निर्वाण। और जिसके शरीर से निकल जाता है ना, ये शरीर तीन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसका मनाते हैं स्वर्ण निर्वाण महोत्सव। तो निर्वाण मतलब कि वासना कामना रूपी बाणों का समापन, स्वरूप में स्थिति, परमानंद की प्राप्ति। तो देखिए निर्वाण तो हम सभी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहता हो, सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, कैसी भी समस्या हो, जो शूल के समान हमारे को पीड़ा पहुंचा रही है, उन समस्याओं से निजात हो, परमानंद की प्राप्ति हो, सभी चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो निश्चित ही आपको इस निर्वाण के रहस्य को समझना पड़ेगा। उपनिषद में एक मंत्र आता है, ह्यात्मज्ञम ह्यचेत भूति कामः। जो लोग स्वाध्याय करते हैं उन्हें मालूम है, आत्मज्ञ की अर्चना करे भूति कामः। भूति शब्द का वहां पर दो अर्थ किया है, दैवित और मानुषवित, ऐसा दो अर्थ किया है। यदि आपको भूति मतलब ऐश्वर्य, चाहे आपको मानुषवित चाहिए, रुपया पैसा धन चाहिए, या आपको दैवित आत्मज्ञान चाहिए, दोनों ही कामनाओं की परिपूर्ति आत्मज्ञानी की अर्चना से होती है। इसलिए जो है इस 50 वर्ष के बाद स्वर्ण निर्वाण महोत्सव हम सभी लोग जो है मना रहे हैं। और ऐसा मनु महाराज ने भी कहा है, जहां पर विचार हुआ कि सनातन धर्म हम किसे कहते हैं, वहां पर मनु महाराज कहते हैं मनुस्मृति में, कृतम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। ये मनु महाराज का कथन है, जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके लिए कुछ हमें करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। कृतम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। जिस महापुरुष ने बंबई जैसे महानगरी में प्रेम पुरी रूपी कल्प तरु का बीजारोपण किया, जिसके नीचे हम लोग बैठ करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, उसके लिए कुछ मतलब कि तर्पण करने का अवसर है, इसलिए हमें हर्षोल्लास के साथ करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यदि हम नहीं करें तो हमें शास्त्रों में जैसा बतलाया गया है वैसा जो कृतज्ञता का दोष है वह लगता है। तो आज तो जो है हमें पता नहीं था प्रवचन है कि नहीं, और ग्रीष भाई ने बताया भी होगा तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा ट्रेन में, अचानक कि मालूम पड़ा प्रवचन भी है, तबने कहा चलो। कल से जो हम लोगों का प्रकृति विषय है शिव महिमन का, जिसमें से मैं समझता हूं 12 या 13 श्लोक हो चुके हैं, उसके आगे जो बाकी है उसको हम लोग करेंगे और पुस्तक ले करके अपना जो है चलेंगे इन्हीं वचनों के साथ मान करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 27. Thank you.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: लोकमस्मै।
1: संज्ञानामसि कामधरानं मयीते कामधरानं भूयात्।
0: अग्नेर्भस्मास्यग्नेःपुरीशमसि चितस्थपरिचिता ऊर्ध्वचितश्रयध्वम्।

0: सत्यम्।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

पतये हर हर महादेव। ओ आदिगुरु शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी

दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के प्रसंग में आठवां श्लोक है। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत स्वप्ने जाग्रति वायये स पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वेदांत दर्शन का बहुत गहन चिंतन हो रहा है। एक के बाद एक वेदांत के रहस्य को इन स्तोत्रों के द्वारा प्रकट हो रहा है, उजागर हो रहा है। अभी तक पहले श्लोक से लेकर ये सात श्लोक तक जो कुछ भी विचार हुआ है, उन सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि एकमात्र सत्ता और स्फुरणा परमात्मा के अलावा अन्यत्र कहीं किसी में नहीं है। अन्य किसी वस्तु में न तो उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, न अन्य किसी वस्तु के अपने स्वतंत्र प्रकाशित होने की क्षमता है। यदि कोई वस्तु प्रकाशित होते हैं यानी हमें ज्ञात होते हैं, तो वो ज्ञान होने में भी परमात्मा का प्रकाश यानी परमात्मा का ज्ञान ही काम करता है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र दिख रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, तो भी उसकी स्वतंत्रता अस्तित्व में भी परमात्मा की ही सत्ता काम कर रही है। इसके बावजूद भी लोगों को ये भ्रांति होती है कि ये वस्तु स्वतंत्र सत्ता वाले हैं और स्वतंत्र ज्ञात होते हैं, स्वतंत्र प्रकाशित होने वाले हैं। ये हमें भ्रांति होती है। इन सात श्लोकों के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसको एक सार के रूप में आठवें श्लोक में बता रहे हैं। पहले ये निष्कर्ष निकला, सुरेश्वराचार्य जी ने इसके बारे में थोड़ा संकेत किया है। प्रकाश व्यतिरेकेण पदार्थ कोऽपि नास्ति चेत् परमार्थोपदेशान्तो व्यवहार कथम भवेत्। मान लो कि पूर्व पक्ष के तरफ से प्रश्न उठा रहा है, व्यवहार को सत्य मानने वाले, जगत को सत्य मानने वाले, पदार्थों को स्वतंत्र सत्य मानने वालों की तरफ से ये प्रश्न है। वो कह रहा है प्रकाश व्यतिरेकेण, सत्ता और प्रकाश के अतिरिक्त जगत में कोई भी वस्तु का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ऐसा मानते हो तब यह मानना पड़ेगा कि एक ही वस्तु है जगत में और उसके अलावा और किसी का अस्तित्व नहीं है, ये मानना पड़ेगा। वेदांत का यही सार संग्रह है, ये वेदांत का यही मूल सिद्धांत है। पारमार्थिक एक सत वस्तु ब्रह्मा, परमात्मा, महेश्वर, आत्मा, अब जिन नामों से भी कहो दो, उस परमार्थिक एक सद वस्तु के अलावा और कोई भी वस्तु अस्तित्व में है ही नहीं। यदि ऐसा है तब परमार्थो उपदेशांतो व्यवहार कथम भवेत्। तो बंधन से लेकर मोक्ष पर्यंत और जीव को बंधन से छुटाने का उपाय, गुरु और शिष्य का संबंध, ये सब कैसे संभव होगा? कौन किसको उपदेश करेगा? कौन किसके पास उपदेश सुनने के लिए जाएगा? यदि एक वस्तु के अलावा दूसरा कोई वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है तो ये तुम्हारा वेदांत ही बेकार है, क्योंकि प्रेमपुरी आश्रम ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि किसको कौन उपदेश सुनाएगा, कौन उपदेश सुनने जाएगा? इस व्यवहार का क्या करोगे? इस व्यवहार का लोप हो जाएगा। पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न है।
परमार्थोपदेशांत, परमार्थ माने उपदेश का अंतम अंत कहां है, गुरु शिष्य भाव से उपदेश का अंत कहां होता है, एक पारमार्थिक सत्ता की प्राप्ति तक होती है, तो उसका अंत कहां जाकर होगा, इसका क्या होगा, इस रूप में उसने प्रश्न के रूप में रख दिया है। एक परमात्मा सत्ता के अलावा और कोई वस्तु यहां नहीं है, तो फिर कस्य बंधस्य मोक्षस्य, बंधन किसको होगा, बंधेगा कौन, फिर मुक्त कौन होगा, क्या वही परमात्मा खुद बंधता भी है, बंध जाता है, और वही परमात्मा खुद मुक्त होता है, तो वही परमात्मा अकेले बंध जाता है, वही परमात्मा अकेले मुक्त हो जाता है, तो मुक्त कौन करता है, वो अपने आप मुक्त हो जाता है, तो फिर ये गुरु शिष्य का व्यवहार किस काम का, शास्त्र उपदेश का क्या काम प्रयोजन है। मायाया लक्षणम किम स्यात् इत्येवं परिपृच्छतः, तीन प्रश्न पूर्व पक्ष ने आठवें श्लोक को आरंभ करने से पहले, सात श्लोक तक के प्रसंग को सुनने के बाद पूर्व पक्ष ने ये तीन प्रश्न रखा। पहला प्रश्न रखा, परमात्मा एक ही है, एक के अलावा और कुछ जगत में कुछ भी नहीं है, दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है, तो फिर मोक्ष पर्यंत उपदेश किसको किया जाएगा और कौन करेगा। दूसरा होगा, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है तो बंधन किसको होता है, क्या परमात्मा को ही बंधन होता है कि परमात्मा के भिन्न को होता है, और यदि भिन्न को होता है तो फिर परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है, यह क्यों कहा जा रहा है, और परमात्मा के अलावा यदि कोई दूसरा कोई नहीं है तो यह कहना पड़ेगा कि बंधन उसी परमात्मा को प्राप्त होता है। अब परमात्मा को भी बंधन प्राप्त होता है तो फिर जीवात्मा मुक्त होने की आशा क्यों करेगा, है? समर्थ पुरुष भी जब फंस जाता है तब उस भाव को प्राप्त होने के बाद भी फंसना पड़ता है, तो जीवात्मा कहता है कि हम पहले से फंसे हैं तो फिर क्यों फेरी फंसने जाएंगे, क्यों ब्रह्म होने के बाद भी फंसना पड़ता, क्योंकि ब्रह्म फंसता है आप बता रहे हो, तो फिर क्या फायदा हुआ, है? प्रक्षालनाधि पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम, कहीं कीचड़ था रस्ते में, कीचड़ था और जान रहे हैं कि ये कीचड़ है, और कीचड़ में पांव रखने के बाद निकलने से फिर धोना पड़ता है, तब कीचड़ में पांव पहले रखे ही क्यों, कीचड़ में पांव रखे बिना यदि निकलने की दूसरा रास्ता है तो फिर कीचड़ में ही पांव क्यों रखना, और कीचड़ में पांव रखा फिर धोना पड़ता है तो फिर क्यों रखना है, ये बात अलग है कि दूसरा उपाय ही नहीं है तो कीचड़ में पांव रख के भी जाना पड़ेगा और निकलने के बाद धोना भी पड़ेगा। जब कीचड़ में पांव रखे बिना भी आप निकल सकते हो तो कीचड़ में पांव रखना ही क्यों है। प्रक्षालनाधि पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम, बाद में जब उसको धोके हटाना ही है तो पहले से ही उसका स्पर्श ही मत करो, है ना? समझदारी तो यही है। जगत को जब बाद में जाकर इसको निषेध करना है, हटाना है, हाँ, तब फिर पहले ही इसको स्वीकार क्यों करना, और आप लोग सब यही करते आ रहे हो, पहले स्वीकार करो बड़े खुशी से, बैंड बाजा बजा बजा कर, पार्टी दे दे कर, है, नाच नाच कर स्वीकार कर लो, और बाद में रो रो के हटाओ इसको, सभी यही करते हैं, हटाते सब है, हटता सब है, सभी हटाते हैं, सभी से सब हट जाता है, नहीं भी हटाओगे तो हटेगा वो, लेकिन जिस खुशी से तुमने इसको स्वीकार किया था क्या हटते समय वही प्रसन्नता रहती है, है? और यदि अपने आप हटाने चाहो तो हटेगा नहीं, रोना पड़ेगा ये अभी तक क्यों नहीं हट रहा है,
आपके सारे प्रयत्न विफल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस जगत को हटाने के लिए आप रात दिन एक कर रहे हैं अभी।

जगत को, जागतिक संबंध को, जागतिक पदार्थों को खुशी खुशी से विदाई करो। देख लिया बहुत हो गया, भोग लिया बहुत हो गया, उपयोग कर लिया बहुत हो गया, अनुभव कर लिया बहुत हो गया। कतिनाम सुता नलालिताम कतिनाम बधू रभुंजी। आदिगुरु शंकराचार्य जी अपनी मां को समझाते हैं, जब उन्होंने कहा कि मुझे सन्यास लेना है, मुझे आज्ञा दो तुम, ये जगत से मैं निकलना चाहता हूं, इस बंधन से मैं फंसना ही नहीं चाहता हूं, निकल जाऊंगा, प्राप्ति से पहले ही मैं निकल जाऊंगा, सन्यास लेने की अनुमति दो। मां रोने लग गई, बेटा तू सन्यास लेगा, मेरा और कौन है यहां जगत में तेरे अलावा, कोई आश्रय कोई आधार मिलेगा करके शादी किया, पति चला गया, तुम्हारा बाप चला गया, बिना पूछे चला गया, बाय बाय भी नहीं किया, हाई हाई करते हुए गया, है किया कि नहीं? कोई बाय बाय करके जाता है जाने वाला? कोई बाय बाय करके जाता है? सब हाई हाई करते जाते, हाई अब क्या होगा, हाई ये क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, घर का क्या होगा, मकान का क्या होगा, तमारो शू थसे, ले जी हाय हाय, अरे बाय बाय करो, प्रसन्नता से विदाई करो। शंकराचार्य जी की मां कहती है ना, मेरे तो तुम हो, एक आश्रय पति था वो भी चला गया, और एक तुम्हारे भरोसे में मैं जी रही हूं, और मुझे आगे का जीने का एक आधार भी तुम ही हो जब तक जीऊंगी, और तुम भी चले जाओगे, तो मां प्रसन्नता से विदाई नहीं कर रही है, बाय बाय नहीं कर रही है, हाई हाई करने लगी है। शंकराचार्य जी ने कहा कि ऐसे ये विदाई नहीं करने वाली है, कुछ खेल खेलना चाहिए, कुछ नाटक करना चाहिए। तब चले गए नहाने के लिए, वो तो कपड़ा धो रही थी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे नहा रही थी, कपड़ा धोकर फिर नहाना था, कि मां थोड़ा मैं भी पानी में तैरता हूं। अच्छा बेटा जाओ खेलो, सन्यास लेने जाऊंगा तो मना किया, तो पानी में नहाने के लिए जाता हूं तो ठीक है जाओ, इन्हें कहते हैं कि डूबेगा, उतरने के लिए ना डूबने की जगह जाना चाहता है तो जाने नहीं देते, और डूबने की जगह जाना चाहता है तो खुशी से जाओ। हम लोग यही तो करते हैं व्यवहार में, इससे अलावा और क्या कहते हैं? आपका बेटा कहे कि मैं सन्यास लेने जाऊंगा हरिद्वार, तो आप मना करने लग जाओगे। अब आपका बेटा अपनी तरफ से प्रस्ताव लेकर मैंने किसी लड़की से प्रेम किया, भले ही विजातीय हो, भले ही दूसरे धर्म की हो, भले ही दूसरे गोत्र की हो, भले ही कुछ भी हो, मैंने लड़की निश्चय कर लिया मां, मुझे शादी करनी है पापा, तो खुशी से कर लो बेटा, तुम खुशी तो हम खुशी, हम राजी हो जाते हैं, विरोध करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। फंसने डूबने के जगह पर जाना चाहता है तो हम बड़े राजी से विदाई कर देते हैं, हम भी मदद करेंगे, हाँ तुमको डूबने में, हाँ। और जब डूबता है तो फिर साथ में सब रोने लग जाते हैं। तो मां ने विदाई कर दी शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी तैरते हुए गए बीच धार में, और उनके संकल्प से एक मगरमच्छ खड़ा हो गया, बड़ा भारी मगरमच्छ खड़ा हो गया, और मुख बहा रहा है और उनके पांवों को पकड़ रहा है, और जोर जोर से शंकराचार्य जी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मां बचाओ बचाओ, ये मुझे पकड़ रहा है, ये मुझे खा रहा है, निगल रहा है, मुझे बचाओ बचाओ। मां देख रही है, देखते हुए करेगी क्या, वो उसकी क्षमता से बाहर है, कूदने की हिम्मत नहीं हो रही है नदी में, क्या करेगा, बैठी बैठी रोने लगी, चिल्लाने लगे, चारों तरफ हाई गुहार किया, कोई नजदीक में नहीं है, क्योंकि एकांत नदी के किनारे में है, अब क्या करें। तो उस अवस्था में शंकराचार्य जी ने कहा, मां मेरी सन्यास लेने की तीव्र इच्छा थी, तुमने राजी खुशी से सन्यास लेना नहीं दिया, मुझे अब लगता है कि बिना सन्यास के ही मरना पड़ेगा, बिना सन्यास के मरना पड़ेगा, और इस तरह यदि मगरमच्छ के द्वारा खाकर मेरी मृत्यु होगी तो इसको शास्त्र दृष्टि से अकाल मृत्यु माना जाएगा,
और इससे मेरी सदगति नहीं होगी।

0: कोई बात नहीं है, विधि पूर्वक क्रिया से संन्यास न भी हो तुम अनुमति नहीं दे रही हो, भले वचन से अनुमति दे दो कि बेटा तू संन्यास ले ले, क्योंकि सारा कर्म वैदिक कर्म संकल्प के द्वारा ही फलीभूत होता है। बिना संकल्प से केवल क्रियात्मक कर्म करोगे तो फलीभूत नहीं होगा, और क्रियात्मक न हो और शुद्ध संकल्प हो तो वही फलीभूत हो सकता है। तो शंकराचार्य जी ने मां को कहा कि तुम अनुमति दो, मैं संकल्प करता हूं यही पानी में कि मैं संन्यास ले रहा हूं, हाँ मैं जब संकल्प करता हुआ मरूंगा तो मेरी संन्यास फलीभूत हो जाएगी, मेरी संन्यास फलीभूत हो जाएगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं अकाल मृत्यु से मेरी दुर्गति नहीं होगी। घुमा फिराकर शंकराचार्य जी ने जब मां के सामने रखा तो मां राजी हो गई। यदि ऐसे ही बात है तो तू संन्यास लेकर मर, क्योंकि मगरमच्छ तो खा ही रहा है, मरना तो निश्चित है। तो यदि ऐसा संकल्प से ही संन्यास लेकर मरना है, मरना निश्चित है, और यदि संकल्प से तेरा संन्यास पूरा होता है तो मेरी आज्ञा है तू बेटा तू संकल्प कर कि भू संन्यस्तम मया, संकल्प कर मैं संन्यास ले लिया ये संकल्प कर, मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरी मां नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरे बंधु नहीं है, मेरा मित्र नहीं है, मेरे सखा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, कोई जगत नहीं, कोई कुछ नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, बस शंकराचार्य जी ने संकल्प किया, मां की आज्ञा हो गई तो संन्यास ले ले। तो आज्ञा होते ही मगरमच्छ ने छोड़ दिया। सन्यासी को कौन मारेगा और कौन खाएगा भाई, है सन्यासी को कौन मारेगा कौन खाएगा, इसलिए तो सन्यासी जीते जी मरा हुआ मुर्दा है। हाँ बात समझ गए ना, वह वैदिक विधि से संकल्प से मर चुका हुआ होता है, क्योंकि सन्यास की पद्धति ही ऐसी है, विधि ही ऐसी है। अष्टश्राद्ध नांदी श्राद्ध आदि करके सब पिंड आदि कर चुकने के बाद लास्ट में अपनी ही श्राद्ध अपने हाथों से कर लिया जाता है, फिर इसके बाद विरजा हवन होता है, फिर कुछ नहीं, संकल्प ही यही होता है, क्रिया ही यही होती है। तब उसको फिर क्या खाएगा, कौन मारेगा, वो तो पहले ही मर चुका है, क्या मारेगा। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखी है, सन्यासी के कोई भी शारीरिक छोड़ने के बाद कोई विधि नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानाग्नि से पहले ही जला चुका है उस शरीर को। उस शरीर को क्या जलाओगे और दोबारे, जले हुए को क्या जलाओगे, जले हुए राख को क्या जलाना है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज हिंदी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन नायनमार पुराणम। द टाइटल इज कोचंग चोल नायनार पुराणम, प्रेजेंटेड बाय श्री सिंगपूर शंकर नारायणन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। भक्तों, अभी हम जिस दक्षिण भारतीय संत या शिव भक्त की कहानी सुनेंगे, उनका नाम कोचेंकोट चोलर है। एक कथा प्रचलित है कि तिरुचि के इसके समीप तिरुवानई कोविल में श्वेत जामुन के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। प्रतिदिन एक गजराज जब वहां से गुजरता तो नियम पूर्वक शिवलिंग को अभिषेक करता था और फूलों से अर्चना करता था। स्थान एक घने जंगल में स्थित था। एक मकड़ी के मन में विचार आया कि भगवान के लिंग शरीर पर पेड़ों के सूखे पत्ते न गिरे, इसलिए उसने एक जाल बुनकर विधान ऐसा बना दिया था। जब गजराज वहां पर आता तो मकड़ी के जाल को वहां पर अनुचित मानकर उसे ध्वस्त कर देता। मकड़ी रोज जाल बुनती और हाथी उसे नित्य ही मिटा देता था। दुखी होकर एक दिन मकड़ी हाथी की सूंड में चली गई और उसे ढसने लगी। पीड़ा से व्याकुल हाथी ने सूंड को पत्थर पर दे मारा। शिला से टकराने से मकड़ी मर गई। हाथी भी चोट खाकर गिर पड़ा तो उस पीड़ा की स्थिति में वह भी परलोक से भाग गया। चोल राजवंश के पूर्वज राजा शुभदेव जब अपनी पत्नी कमलवती के साथ अनेक पुण्यधामों की यात्रा करके लौटे तो उनके आने के बाद उनकी पत्नी रानी गर्भ से ठहर गई। रानी प्रसूति गृह में थी। प्रसव का समय समीप था। राज ज्योतिषियों ने बताया कि यदि पुत्र का जन्म एक घड़ी के बाद हो तो वह पुत्र तीनों लोकों का अधिपति बनेगा। रानी ने अपने पुत्र के भविष्य को मंगलमय करने की कामना से स्वयं को औंधा लटका दिया और पुत्र जन्म टल गया। उचित समय पर पुत्र का इस दुनिया में आगमन हुआ। शुभ घड़ी आने पर जब रानी ने बालक को जन्म दिया तो उस शिशु की आंखें एकदम लाल थीं। रानी ने प्रेम से अभिभूत होकर कहा, इन को चिंकोणम, मेरा प्रभु लाल आंख वाला। उसके साथ ही असह पीड़ा के कारण रानी ने प्राण त्याग दिए। गेलाल कुल में चिंकन्नर समुदाय आज भी पाया जाता है। यह शिशु वही मकड़ी थी जिसने हाथी की सूंड के अंदर फंसकर मृत्यु को प्राप्त कर गई। पुनर्जन्म पाया था कुछ चिंकोट चोलर के रूप में। वह राजा बनने पर पूरे तमिलनाडु में अनेक मंदिर बनवाए। इस कथा के मूल में तमिल प्रदेश में व्याप्त पुनर्जन्म पर विश्वास का संकेत देता है। यह जन्म मृत्यु की एक श्रृंखला चलती रहती है। शैव धर्म की वही ही नहीं, बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। आत्मा अमर है पर शरीर नश्वर है, अतः अमर आत्मा अपना चोला बदलता रहता है। वैज्ञानिक चिंतन परिमाण देते हैं कि शरीर नष्ट होने पर आत्मा फिर भी निरंतर चलती रहती है। नवी शताब्दी के कवि माणिकवाचकर कहते हैं, मैं तृण बना, पौधा बना और फिर कीट बना, सभी जन्म लेकर क्लेश पाया है प्रभु। स्पष्ट है कि प्रत्येक जीव अपने जन्म के सुकृत या दुष्कृत के आधार पर भिन्न भिन्न जन्म प्राप्त करते हैं। इस बात का भी उल्लेख है कि इस चोल राजा कोचंकोट चोलक को अपने पुनर्जन्म की स्मृति रही थी, इसलिए उसने अपने पूरे तमिल प्रदेश में भगवान के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर क्या संबंध लगभग 7वीं शताब्दी में हुए। उनके समय तक अनेक मंदिर नष्ट हो गए थे, फिर भी संबंधर ने शेष मंदिरों में जाकर दर्शन किए और स्तुति कांत तेवारम का गायन किया। वैष्णव भक्त तिरुमंगई आलवार ने इस राजा का उल्लेख किया है, त्रिवेद स्वरूप परमेश्वर के लिए भव्य और सुंदर स्तर मंदिर बनवाकर चोल राजा महान कीर्ति का अधिकारी बना। ऐसा कहा जाता है कि कोचंकोट चोलर अपने सभी मंदिरों में के अंदर जाने की जगह ऐसे बनाते जिसमें कोई हाथी प्रवेश न कर सके, लेकिन आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से दक्षिण भारत में लिया जाता है। उनको एक उच्च कोटि का नायनमार माना गया है। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। Namashivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namashivaya.
2: ये जितने भी चीज हैं वो धर्म चक्षु से दिखाई पड़ता है, स्वर्ग नरक पुण्य पाप ये सब चर्म चक्षु से नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये कौन से चक्षु से दिखेंगे? धर्म चक्षु से। जिसके पास धर्म चक्षु होगा वह पाप को भी देखेगा और वह पुण्य को भी देखेगा, इसीलिए पाप को छोड़ेगा और पुण्य को ग्रहण करेगा। यदि न देखता होता तो छोड़ता, न देखता होता तो ग्रहण करता। और जिसके पास, इसलिए मैं हमेशा मजाक में कहा करता हूं, जिसके पास धर्म चक्षु नहीं है, खाली चर्म चक्षु है धर्म चक्षु नहीं है, उनको संडे मंडे नहीं दिखता, केवल दिखता अंडे। उनको क्या दिखता है? है? उनको संडे भी नहीं दिखता, मंडे भी नहीं दिखता है। क्या दिखता है उनको? चर्म चक्षु से संडे दिखेगा कि मंडे दिखेगा? अंडे दिखेगा। अंडा देखने का दृष्टि है चर्म चक्षु, और संडे मंडे तिथि वार गोत्र नक्षत्र ये देखने की दृष्टि का नाम है धर्म चक्षु। धर्म चक्षु और चर्म चक्षु ये अलग अलग चीज है। स्थूल शरीर से जुड़कर धर्म चर्म चक्षु काम करता है, ध्यान देना। स्थूल शरीर के गोलकों से मिलकर चर्म चक्षु काम करता है और सूक्ष्म शरीर से मिलकर धर्म चक्षु काम करता है। धर्म चक्षु हमेशा केवल सूक्ष्म शरीर में रहता है, हालांकि चर्म चक्षु भी चक्षुर इंद्रिय सूक्ष्म शरीर में रहता है, लेकिन देखने के लिए वो उसको स्थूल शरीर की गोलकों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके कितने नेत्र हैं? बोलो, हैं? आपके कितने नेत्र हैं? एक एक है तो कौन सा है? चर्म चक्षु, वो तो अपडेट है ना आप लोगों के पास, हैं? चर्म चक्षु तो बिल्कुल ठीक है ना? अरे चर्म चक्षु ठीक नहीं हो तो जाओ कुलीन कोठारी के यहां, चर्म चक्षु तो ठीक है। अच्छा धर्म चक्षु भी है कि नहीं? यदि धर्म चक्षु न होता तो तुमको प्रेमपुरी आश्रम दिखता ही नहीं, और धर्म चक्षु न होता तो तुम यहां आते ही नहीं। यहां तुम आए किस दृष्टि से? धर्म चक्षु, हाँ? क्योंकि धर्म चक्षु मतलब उसका विषय है अध्यात्म, चर्म चक्षु का विषय केवल रूप है, तो धर्म चक्षु का विषय रूप नहीं है, धर्म चक्षु का विषय अध्यात्म है, धर्म है। धर्म चक्षु देता है कौन? चर्म चक्षु देता है कौन? चर्म चक्षु देने वाला कौन है? किसने दिया आपको ये चर्म चक्षु? ये चर्म चक्षु देने के लिए परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, ये तो प्रकृति ही दे देगी। चक्षु गोलक कहीं परमात्मा देता है? चक्षु गोलक तो प्रकृति देती है, क्योंकि ये तो फिजिकल बॉडी तो प्राकृत है, पंचभूतात्मक है, और तुम्हारी जो चक्षु गोलक है वो पंचभूतात्मक है, ध्यान देना। तुम्हारे जो आंख हैं गोलक हैं, चक्षु गोलक, वह पंचभूतात्मक है। कौन से पंचभूतात्मक? पंचीकृत कि अपंचीकृत? क्या बात उठपटांग उत्तर देते हो, एक बोलता है पंचीकृत, दूसरा कहता है अपंचीकृत, गलत क्यों बोलते हो? जो है वो सही बोलो। चक्षु गोलक पंचभूतात्मक है, पंचीकृत पंचभूतात्मक है कि अपंचीकृत पंचभूतात्मक है? बोलो, है साहस बोलने की? ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही पंचकृत पंच महाभूत का कार्य है, तो स्थूल शरीर पंचकृत पंच महाभूत का कार्य है, तो चक्षु गोलक स्थूल शरीर का अंग होने के कारण चक्षु गोलक भी पंचीकृत पंच महाभूत का है। समझ गए कि नहीं? कोई पशु मर गया, मर गया तो चक्षुरिंद्रिय लेके गया वो पशु, अब उसका शरीर वहां पड़ा है, शरीर पड़ा है तो चक्षु गोलक भी तो पड़ा है ना। और कोई गिद्ध या काग खाने लगेंगे तो शरीर का वो मांस भाग तो खाएंगे, साथ में आंख भाग भी खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि पंचभूत आत्मा का है, इसलिए मांसमय है चर्म चक्षु। लेकिन ये ध्यान रखना, जो धर्म चक्षु है, धर्म चक्षु या चक्षु इंद्रिय, चक्षु गोलक और चक्षु इंद्रिय में प्रश्न कर रहा हूं, चक्षु इंद्रिय पंचभूतात्मक है कि नहीं? चक्षु इंद्रिय, चक्षु गोलक तो पंचभूतात्मक है, पंचभूतात्मक भी पंचीकृत पंच महाभूतात्मक है, लेकिन चक्षु इंद्रिय पंचभूतात्मक है कि नहीं? तुम लोग वेदांत नहीं सुनते हो ना, इसीलिए गड़बड़ करते हो, या सुनते भी हो तो विचार नहीं करते हो, गड़बड़ करते हो। हाँ, चक्षु इंद्रिय, इंद्रिय की बात कर रहा हूं, चक्षु इंद्रिय पंचभूतात्मक है लेकिन वो अपंचीकृत पंचभूतात्मक है। चक्षु गोलक पंचीकृत पंचभूतात्मक है तो चक्षु इंद्रिय अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक है, लेकिन धर्म चक्षु कौन से भूतात्मक है? पंचीकृत पंच महाभूतात्मक है कि अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक है? धर्म चक्षु धर्म चक्षु, धर्म चक्षु अपंचीकृत भी नहीं है, पंचीकृत भी नहीं है। धर्म चक्षु भूतात्मक है ही नहीं, भावात्मक है। मन पंच नहीं है, मन तो उस धर्म चक्षु का गोलक है। बेटा मन क्या है? धर्म चक्षु का गोलक है मन, धर्म चक्षु अलग है। यदि धर्म चक्षु का गोलक न होता, धर्म चक्षु ही होता, तो सबके पास मन है कि नहीं है? सबको पाप दिखाई पड़ता, सबको दिखाई पड़ता पाप है। इसलिए उस गोलक में जो धर्म का भाव है, मन में धर्म का भाव है तो उसको पाप दिखेगा, मन में धर्म का भाव है तो उसको पुण्य दिखेगा। मन में यदि पाप पुण्य का भाव नहीं है तो उसको केवल कुछ नहीं दिखेगा, न पाप दिखेगा न पुण्य दिखेगा, संडे हो मंडे हो सदा खाओ अंडे हो जाएगा। वो खाली चर्म चक्षु से काम करेगा, हाँ वो धर्म चक्षु से काम करेगा ही नहीं। मन तो है, मन है तो फिर धर्म चक्षु काम करना चाहिए ना, इसलिए मन गोलक है। किसका? धर्म चक्षु अलग है, धर्म चक्षु का गोलक मन है। जैसे चक्षुर इंद्रिय अलग है, चक्षुर इंद्रिय का गोलक अलग है, इसी तरह धर्म चक्षु अलग है, चक्षुर धर्म चक्षुर इंद्रिय का गोलक मन है, इसलिए वह भावमय है, वह पंचभूतात्मक नहीं है, भावात्मक है। और ये भावात्मक चक्षु धर्म चक्षु की उत्पत्ति कहां से होती है? किसी भूतों से नहीं होती है, वो प्राकृत नहीं है, धर्म चक्षु प्राकृत नहीं है, इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं चर्म चक्षु प्राकृत है। प्राकृत किस लिए? चक्षु गोलक भी प्राकृत है, चक्षु इंद्रिय भी प्राकृत है। क्या समझे बोलो? चक्षु गोलक प्राकृत कैसे? पंचकृत पंच महाभूत का अंग है। चक्षु इंद्रिय प्राकृत कैसे? तो अपंचकृत पंच महाभूत का कार्य है। पंच महाभूत चाहे पंचकृत हो चाहे अपंचकृत हो, प्रकृति का कार्य है, इसलिए प्राकृत है। लेकिन धर्म चक्षु प्रकृति से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वो अप्राकृत है। क्या समझे, वो संस्कृत है, प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है, वो संस्कृत है। संस्कार जैसे हो गया, जिसको जैसा संस्कार मिला उसी संस्कार से उनकी दृष्टि बनती है, कौन सी, धर्म चक्षु बनता है। इसीलिए धर्म चक्षु का मूल कारण है शास्त्र। धर्म चक्षु का मूल कारण क्या है, शास्त्र और पुरोहित। हाँ, धर्मशास्त्र का मूल कारण है शास्त्र और पुरोहित। हम गुरु को इतने घटिया नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि धर्म का उपदेश करना गुरु का काम ही नहीं है, ध्यान दो। धर्म का उपदेश करना तो धार्मिक व्यक्ति का काम है, गुरु का काम नहीं है। और विडंबना यह है कि आज गुरु के पास जाकर धर्म की बात पूछते हैं। अरे भाई, गुरु का काम तो ज्ञान देना है, ज्ञान का उपदेश करना है, धर्म का उपदेश करना है। आज गुरुओं को धर्म का उपदेश क्यों करना पड़ रहा, कि क्योंकि तुम लोगों का जो जिम्मा था धर्म का उपदेश करने का, तुम लोग निकम्मे हो गए, तो धर्म का उपदेश का काम भी गुरु के मत्ते आ गया। इसलिए आज गुरु, जितने भी गुरु बनकर घूम रहे हैं, वह ज्ञान की बात कम करते हैं, धर्म की बात ज्यादा करते हैं, ज्ञान की बात कम करते हैं। सुन लो, जितने भी तुम गुरु बनकर घूम रहे हैं, खाली धर्म की बात कर देंगे, ज्ञान की बात कोई नहीं करेगा। धर्म का उपदेश तो माता पिता और पुरोहित, इनका काम है भाई। धर्मशास्त्र पढ़ो, धर्म का उपदेश करो, है देख लो। लेकिन तुम लोग आजकल निकम्मे हो गए, अपने बच्चों को तुमको शिक्षा देनी चाहिए थी, तुम लोगों ने धर्मशास्त्र का शिक्षा नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ, तुम लोगों ने सोचा कि धर्मशास्त्र का उपदेश तो, क्योंकि शिक्षा का कार्य, शिक्षा जो है स्कूल में मिलता है, तो अपने बच्चों को स्कूल में डाल दो तो सब कुछ स्कूल में मिलता है। तो तुम्हारी भ्रांति क्या हो गई, धर्म का उपदेश भी स्कूल करेगा, स्कूल धर्म का उपदेश नहीं करता है। हाँ, स्कूल केवल शिक्षा का उपदेश करता है, संस्कार का उपदेश नहीं करता है। और तुम लोग समझते हो कि बच्चे को स्कूल में डाल दो तो सब कुछ, मेरा बच्चे को वह स्कूल कंप्लीट कर देगा। क्या कंप्लीट करेगा, स्कूल कभी जीवन के संपूर्ण शिक्षा का उपदेश दे ही नहीं सकता है, है? कल भी एक चर्चा हो रही थी, आज सभी लोग यही चाहते हैं, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, समय सापेक्षित शिक्षा, उच्च शिक्षा अपने संतति को अवश्य देनी चाहिए। सभी लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बोलो, सभी लोग, सभी लोगों का यही लक्ष्य है, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को पढ़ानी चाहिए, जैसा भी हो बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो, तुम्हारा बच्चा मूर्ख न रहे। और हम सब क्या करते हैं, वही करते हैं। इसलिए हम स्कूल में जितना फीस देना पड़े भी देते हैं, बच्चों को स्कूल के जिम्मा लगा देते हैं और पैसा दे देते हैं, समझे नहीं। और स्कूल तुम्हारे बच्चों को भर्ती करता है और तुमसे पैसा लेता है, केवल शिक्षा का पैसा लेता है, किसका, एजुकेशन का। इसीलिए शिक्षा वो देता है, सभी स्कूल शिक्षा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जितना ज्यादा फीस लेंगे उतने अच्छा शिक्षा देंगे। आजकल यही प्रोफेशनल चल पड़ा है कि नहीं, बोलो, यही ना चल पड़ा है। लेकिन किसी स्कूल ने शिक्षा के अलावा संस्कार दिया हुआ कोई स्कूल आज मिलेगा नहीं, मिलेगा, क्योंकि हमने भी शिक्षित बनाने के लिए स्कूल में भर्ती किया है, संस्कारित बनाने के लिए भर्ती नहीं किया है। हमने मास्टर को, स्कूल को फीस शिक्षा का दिया है कि संस्कार का भी दिया है, बोलो, हाँ? हमने अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का फीस दिया है, भरा है, कि संस्कारित बनाने का फीस भरा है, हाँ? मुझे तो नहीं लगता संस्कारी बनाने के लिए स्कूल में भर्ती किया हो तुम लोगों ने, संस्कार के लिए फीस दिया हो हमको तो नहीं लगता भाई, क्योंकि शिक्षा के लिए फीस दिया है, उन्होंने भी शिक्षा के लिए फीस लिया है, शिक्षा दिया है, लेकिन संस्कार नहीं देते। आज संस्कार देने के लिए स्कूल में कोई कुछ एक्शन करता है मास्टर, थोड़ा संस्कारी मास्टर होगा तो शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और संस्कार की बात जब करेगा तो उस संस्कार के अनुशासन के क्रम में एक थप्पड़ मारेगा। बोलो क्या मारेगा, मारेगा कि नहीं? अनुशासित करना होगा, संस्कारी करना होगा तो थप्पड़ मारना पड़ेगा कि नहीं? थप्पड़ मारेगा तो बच्चा रोता हुआ घर में आएगा तो तुम लोग क्या करते हो पता है? तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए पैसा नहीं दिया है, पढ़ाने के लिए पैसा दिया है। तुम लोग ये जवाब दोगे कि नहीं स्कूल को, टीचर को? हैं? बोलो ईमानदारी से बोलो। आज सब विश्व में सभी स्कूल वाले ने एक नियम बना दिया कि हमारा काम बच्चों को पीटना नहीं, पढ़ाना है। मतलब क्या हुआ, खाली पढ़ाओगे तो शिक्षित बनाओगे लेकिन संस्कारित नहीं होगा। संस्कार के लिए तो अनुशासन में लाना पड़ेगा, अनुशासन के लिए पीटना भी पड़ेगा, लेकिन पीटते ही कानून बना दिया मास्टर अब पीट नहीं पाएगा। हमारे जमाने में क्या था, हमारे गुरुकुल में क्या था? हमारे गुरुकुल में शिक्षा के लिए पैसा नहीं लिया जाता था, तो हम लोग क्या करते थे? हमारा स्कूल, हमारे गुरुकुलम, हमारे प्राचीन भारतीय विद्या शिक्षा की परंपरा में क्या थी, विद्यार्थी को शिक्षित बनाने की अपेक्षा संस्कारी बनाना जरूरी है। पहले हम संस्कारी बनाते थे फिर उसके बाद हम शिक्षित बनाते थे। और आज क्या होता है बोलो, आज क्या होता है? पहले शिक्षित बनाते हैं, संस्कारी बना दें बाद में तो गनीमत थी, बाद में संस्कारी बनाने का काम उनका है ही नहीं, क्योंकि रोक लगा दिया, पीट नहीं पाओगे, डांट नहीं पाओगे। ले जी, हा एक स्कूल में किसी सनातनी का बच्चा घर में पूजा हुआ, उसने मां ने तिलक लगा दी भगवान के प्रसाद का, वो तिलक लगाए ही स्कूल चला गया तो टीचर ने पीटा मारा, कह दिया कि तिलक लगा के स्कूल में नहीं आ सकता है, कानून बना दिया हमारे स्कूल में ये तिलक टिक्का लगा के नहीं आ सकते हो। मतलब क्या हुआ, संस्कार का कोई जगह नहीं हमारे स्कूल में, ये संदेश दिया गया कि नहीं बोलो तो इस नियम से? तो आज कोई स्कूल संस्कार नहीं देता है, तो विडंबना क्या हुआ, न घर में हम देते हैं न स्कूल में कोई देता है, परंतु क्या शिक्षित होकर पढ़े लिखे होकर आते हैं, है न अभिवादनशीलता है, न विनम्रता है, न अनुशासन है, है कुछ नहीं, उद्दंड होकर आते हैं, क्योंकि शिक्षित तो है, संस्कार है ही नहीं। तो धर्म चक्षु संस्कार से प्राप्त होता है, कौन से संस्कार से? धर्म शास्त्र के माध्यम से धर्म चक्षु की प्राप्ति होती है, यही कारण है। धर्म शास्त्र अलग अलग हैं, जिसने जिस धर्म शास्त्र के माध्यम से जो संस्कार दी वही उसका धर्म चक्षु बन गया, समझ गए कि नहीं? जैनियों ने जैन धर्म के शास्त्र के द्वारा अपने बच्चों को संस्कारित किया और क्या कहा, बटाटा नहीं खाना। तो यदि धर्म चक्षु, जैन धर्म का चक्षु उसके पास विकसित हुआ होगा तो वह बटाटा खाएगा? बोलो। और क्योंकि जैन धर्म के अनुसार कह दिया कि दही नहीं खाना, और यदि उसका बेटे के पास जैन धर्म का दृष्टि धर्म चक्षु यदि होगी तो दही खाएगा, क्योंकि उस धर्म के शास्त्र के आधार पर तुमने उसको संस्कारित दी की और उसको धर्म चक्षु दिया, तो वह सूर्य अस्त होने के बाद नहीं खाना कहा तो क्या वो खाएगा? है ये देख लो। और एक मुसलमान क्या कहेगा, उसकी अपनी अलग दृष्टि है, क्योंकि उनके धर्मशास्त्र अलग है और उसी धर्म शास्त्र के अनुसार एक मुसलमान अपने बच्चों को संस्कार देंगे, मुल्ला मौलवी आदि अपने बच्चों को वो संस्कार देंगे, तो उनकी धर्म चक्षु मुस्लिम धर्म चक्षु होने के कारण, क्योंकि वो चक्षु कुरान से आया है। और ये क्रिश्चियन अपने बच्चों को जो संस्कार देगा वो बाइबिल के आधार पर देगा, तो उनकी धर्म चक्षु उसी प्रकार के होंगे। चर्म चक्षु प्राकृत होने के कारण सभी के समान हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो। चर्म चक्षु प्राकृत है, किसी धर्मशास्त्र से दिया नहीं, इसलिए सभी को लाल फूल लाल ही दिखेगा। समझे कि नहीं है? लाल फूल लाल ही दिखेगा, सफेद सफेद दिखेगा, पीला पीला दिखेगा, चाहे मुसलमान हो चाहे जो। चर्म चक्षु सबके समान है, लेकिन धर्म चक्षु में अंतर है। धर्म चक्षु में क्या है? अंतर है। हाँ, क्योंकि अंतर होने में कारण क्या है? धर्म चक्षु को विकसित करने के धर्म शास्त्र अलग अलग हैं, और उन अलग अलग शास्त्रों से दिया गया होने के कारण धर्म चक्षु स्वतः अलग अलग हो गए हैं। हम तो मांस खाने के लिए भी निषेध कर रहे हैं ना, हमारा शास्त्र तक कर रहा है कि नहीं? सनातन का शास्त्र मांस खाने के लिए भी निषेध कर रहा है, कर रहा है कि नहीं बोलो? और मुसलमान तो मांस खाने के लिए निषेध नहीं करता, परिणाम क्या हुआ? उनका धर्म हिंसा पर आधारित हो गया। उनका धर्म बोलो हिंसा पर आधारित हुआ कि नहीं? भगवान को तो कुर्बानी दो, यहां से धर्म शुरू हो गया। बकरी ईद के दिन जितना बड़ा कुर्बानी दोगे उतना ही खुदा प्रसन्न होगा, होगा कि नहीं बोलो? हैं? होगा, उनका शास्त्र कह रहा है, इसलिए कुर्बानी दी जाती है। गाय का कुर्बानी दो, भैंस का कुर्बानी दो, ऊंट का कुर्बानी दो, बकरे का दो, काटो, भगवान के लिए कुर्बानी करो। नहीं तो बकरी ईद क्यों बनाया बोलो? उन्होंने, हमने बनाया, आप लोगों ने बनाया है? बनाया है? अब उन लोगों के देखो, रोजा का एक महीना होता है, दिन में नहीं खाना कहा धर्मशास्त्र ने, तो दिन में नहीं खाते, दिन भर पानी भी नहीं पिएंगे, और सूर्य अस्त के बाद मांस भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, सर्वभक्षी हैं। क्योंकि कुरान ने निषेध नहीं किया है, कुरान ने दिन में पानी नहीं पीना कह दिया है, तो दिन में पानी नहीं पीना। हा, दिन में खाना नहीं खाना तो कह दिया दिन में खाना नहीं खाना। तो उनकी दृष्टि में दिन में खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, वही धर्म है, है? और रात में कुछ भी खा लो, मांस खाओ, मटन खाओ, लहसुन खाओ, प्याज खाओ, लेकिन दिन में नहीं खाना कुछ, वो धर्म है, उनको वही दिखता है। तो कितने हो गए दृष्टि? एक चर्म चक्षु, दूसरा धर्म चक्षु। मुसलमान को भी स्वर्ग नरक दिखता है, पुण्य पाप दिखता है, लेकिन वो पुण्य पाप की परिभाषा उनके धर्म के आधार पर करते हैं। हमारे धर्म के आधार पर करते हैं क्या? हैं? क्यों अंतर हुआ धर्म चक्षु में? क्योंकि शास्त्र अलग अलग हो गए धर्म शास्त्र, इसलिए दृष्टि में अंतर आ गया, ये देख लो। इसी प्रकार के क्रिश्चियन का तो धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र स्थायी नहीं है, बदल भी जाता है। बदलता है कि नहीं बोलो? धर्मशास्त्र का भरोसा नहीं है, स्थायी नहीं है, बदल भी जाता है। पहले हिंदू के संस्कार से, शास्त्र से उसको धर्मशास्त्र दृष्टि दी गई थी, धर्म चक्षु था, पूरा धार्मिक था, वैदिक सनातन धर्म के आधार पर। अब वो किसी कारण से मुसलमान बन गया तो अब वो हिंदुओं का धर्म दृष्टि चक्षु चला गया। अब कौन सा चक्षु आ गया? मुस्लिम धर्म चक्षु आ गया, ये देख लो। कोई जैनी मान लो किसी कारण से मुसलमान बन गया, कोई सनातनी बन गया, जैनी हिंदू सनातनी जब तक जैन था तब तक तो बटाटा भी नहीं खाता था। अब बोलो वो जैन यदि मुसलमान बन गया तो गाय का मांस खाएगा कि नहीं, पाप मानेगा उसको, बदल गया कि नहीं, बोलो धर्म चक्षु बदल गया कि नहीं। इसलिए धर्म चक्षु का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए, चर्म चक्षु का भी भरोसा नहीं है कब बिगड़ जाए, चर्म चक्षु का भी भरोसा नहीं है कब बिगड़ जाए। इसके अलावा एक तीसरा नेत्र है, कौन सा था मालूम है? ज्ञान चक्षु। ये तीसरा चक्षु है ज्ञान चक्षु। हां, ज्ञान चक्षु न प्राकृत है न संस्कृत है। ज्ञान चक्षु प्राकृत भी नहीं, प्रकृति का दिया हुआ भी नहीं। ज्ञान चक्षु धर्मशास्त्र का दिया हुआ नहीं है, ध्यान देना। धर्मशास्त्र ज्ञान चक्षु नहीं देते। ज्ञान चक्षु देने वाला शास्त्र कौन है? वेदांत शास्त्र और गुरु। धर्म चक्षु देने वाला गुरु नहीं, ज्ञान चक्षु देने वाला गुरु, धर्म चक्षु देने वाला माता पिता और पंडित पुरोहित, और धर्म चक्षु देने वाला प्रकृति, ज्ञान चक्षु देने वाला गुरु। ज्ञान चक्षु के बाद फिर और चक्षुओं की कोई उपयोगिता नहीं। ज्ञान चक्षु एक बार आ गया आपका, ठीक हो गया, खुल गया, हम ध्यान देना, ज्ञान चक्षु एक बार खुल गया आपका, फिर वह बदलता नहीं। ज्ञान चक्षु एक बार खुल गया फिर वह बदलता भी नहीं, ज्ञान चक्षु एक बार खुल गया वह नष्ट भी नहीं होता, बदलता भी नहीं। यही तो आत्यंतिक दुख त्रय की निवृत्ति हो जाएगी। तत्त्वमसी, ये देख लो, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये तीन नेत्र भगवान शिव के हैं। शिव के कौन कौन सी हैं? चर्म चक्षु भी ठीक काम कर रहा है पूरा का पूरा, और धर्म चक्षु भी पूरा काम करता है, और ज्ञान चक्षु भी शिव जी का तो पूरा काम कर रहा है, बिगड़ केवल जीव जी का बिगड़ रहा है। कौन सा चक्षु बिगड़ रहा है? जीव जी का। ज्ञान चक्षु खुला ही नहीं है। हमने देखा एक आश्रम में, हरिद्वार में बड़ा एक खेत था, फार्म था, तो वहां एक कुत्ता पाल रखा था, तो कुतिया भी थी, कुतिया ने बच्चा दिया, तीन चार बच्चे एक साथ हो गए, तो बड़े जोर जोर से रोने लग गए वो बच्चे कुतिया के। हमने जाके देखा तो अभी अभी पैदा हुए थे बेचारे, आंख तो बंद, अभी अभी पैदा हुए थे, आंख खुले ही नहीं थे बेचारे, आंख बंद का बंद, और देख ही नहीं रहे। तो दो तीन दिन के बाद उनकी आंख खुली, तब वो बच्चे लोग, वो कुतिया के बच्चे तब देखने लग गए, दो तीन दिन के बाद उनकी आंख खुले। इसी तरह हमारा अब कब खुलेगा पता नहीं। कौन सा? ज्ञान चक्षु। हमारे ज्ञान चक्षु बंद है, ज्ञान चक्षु तो है खुले नहीं है। और ये जो उपक्रम है क्या है? ज्ञान चक्षु खोलने का उपक्रम है, और ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा, इन सब चार कृपाओं के माध्यम से ये ज्ञान चक्षु खुलता है। भगवान करे आपकी ज्ञान चक्षु जल्दी खुल जाए। बोलो आप क्या चाहोगे? मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं, आपके सामने एक विकल्प रखता हूं। चर्म चक्षु हमेशा ठीक रहे ये चाहते हो कि भले ही चर्म चक्षु बिगड़ता है बिगड़ जाए, ज्ञान चक्षु जल्दी खुल जाए ये चाहते हो? अच्छा, ज्ञान चक्षु खुल जावे तो फिर चर्म चक्षु की आवश्यकता रहेगी कि नहीं? यदि तुम कहते हो कि ज्ञान चक्षु खुल जाने के बाद चर्म चक्षु की तो आवश्यकता रहेगी महाराज, फिर कुलीन कोठारी के यहां तो जाने लगोगे, तो ज्ञान चक्षु की कोई उपयोगिता नहीं है। वो यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्नैव च संतुष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह ज्ञान चक्षु खुलने की बात है और ज्ञान चक्षु की बात गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है। कौन से अध्याय में है? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। कोई तीसरा कहता है, कोई दूसरा कहता है, अब बोलो कितने कौन सा अध्याय? पंद्रहवें अध्याय में भगवान ने न चर्म चक्षु की चर्चा की।
0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाई डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: इसी वासना को यदि हम भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं या सत्संग स्वाध्याय प्रवचन में लगाते हैं तो यही जो हमारी वासना है ना, ये वासना उपासना बन जाती है और यही जो हमारी मन की वृत्ति वासना विषय से जुड़ जाए ये बंधनकारी हो जाती है। ये कहीं मन का वृत्ति प्रवाह है, उस वृत्ति प्रवाह का विषय से संबंध जुड़ना ही खतरनाक है, बंधनकारक है, दुख को उत्पन्न करता है। और वही हमारे अंतःकरण की वृत्ति यदि सच्चित आनंद परमात्मा से जुड़ जाए तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो संसार है स्वप्नवत स्पष्टम आत्मा अद्वैतो सनातनः। आत्मा अद्वैत है, सनातन है और सभी लोग आत्मा को पाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो अपनी आत्मा को न पाना चाहे। आत्मा का अर्थ हुआ सत्चित आनंद। सभी अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, सभी ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हैं, जीवन में सभी रोशनी चाहते हैं। रोशनी का नाम ही ज्ञान है, पर कैसी रोशनी हो? रोशनी को ही वेदांत की भाषा में ज्योति कहा गया है, प्रकाश कहा है। एक है विषय का प्रकाश, दूसरा है आत्म प्रकाश। विषय का प्रकाश क्षणिक है परंतु आत्म प्रकाश निरपेक्ष है, स्थायी है, जिसके द्वारा पूरा संसार भाषित हो रहा है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। उस आत्म ज्योति के भाषित होने के बाद ही इस संसार के सारे दृश्य, सारे पदार्थ भाषित होते हैं। वह न हो तो हमारी आंखें देख नहीं सकती है। शरीर स्वस्थ है, युवा है, प्रौढ़ है। जैसे आत्म ज्योति शरीर से निकल जाती है तो हम उसको शव कहते हैं और मिट्टी का ढेर कहलाता है। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक यह तमाम व्यवहार हो रहा है। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा भांजा है, यह मेरा भतीजा है, यह मेरे पति देव है। ये तमाम व्यवहार का आस्पद, आस्पद बोलते हैं आश्रय, तमाम व्यवहार का आश्रय भी आत्म ज्योति ही है, परंतु अज्ञानी आत्म ज्योति को भुला करके इस 3.5 हाथ का जो आकार प्रकार वाला शरीर है इसको ही सर्वस्व मान करके व्यवहार करता है। जो पर्दे के पीछे, पर्दे मतलब कि इस चमड़ी के अंदर जो आत्म ज्योति है जिसका नाम विशिष्ट चैतन्य है। सामान्य चैतन्य तो सबका आश्रय है, सामान्य चैतन्य अविद्या का भी आश्रय दाता है और विद्या का भी। सामान्य चैतन्य पर ही ये आपके जीवन की अविद्याएं रहती है और विद्या भी है, परंतु विशिष्ट चैतन्य अविद्या को नष्ट करता है। जैसे कि ये सामान्य सूर्य की रोशनी है, यह तो ऊर्जा प्रदान करती है, पर यही सूर्य की रोशनी किसी लेंस से, कांच से विशिष्ट हो जाए तो फिर आग लग जाता है। ऐसे ही अंतःकरण की जो वृत्ति है, वही वृत्ति यदि ब्रह्माकार हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति जब बन जाती है, उस वृत्ति पर आरूढ़ जो चैतन्य है, ब्रह्माकार वृत्ति पर आरूढ़ जो चैतन्य है, वह तो हमारे अविद्या का, ज्ञान का ध्वंसक है, नाश करने वाला है। और जब तक वृत्ति अलग है और चेतन अलग है, दोनों का संबंध नहीं है, ये तब तक संसार का खेल तमाशा चलता रहता है। श्रुति कहती है, नान्य पंथा विद्यते अनाय। उस आत्मा को साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान को छोड़कर दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ये सारे रास्ते हमारे अंतःकरण को केवल शुद्ध करते हैं, परंतु आत्मा का साक्षात्कार केवल वेदांत के चिंतन से, आत्मचिंतन से होता है। जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर के उस विद्या को सीखना पड़ेगा। मास्टर बनना है तो मास्टर के पास जाना पड़ेगा। वकील बनना है तो वकालत की विद्या पढ़नी पड़ेगी। अब आप पंसारी को दुकान पर चले जाओ, कहो कि मुझे दवाई चाहिए, मैं बीमार हूं, तो दवाई देगा। ऐसे आपको आत्मा का साक्षात्कार करना है तो जहां पर इस विद्या का चिंतन चलता हो वहां पर आपको शरण लेनी पड़ती है। आज भी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिस कला को उसे सीखना होता है उस कला के जानकार के पास, कलाकार के पास, कारीगर के पास जाता है और सब कुछ दे करके उससे वह विद्या हासिल करता है। ऐसी आत्मविद्या को उपलब्ध होना है तो आत्मवेत्ता ज्ञानी के पास आपको जाना पड़ेगा, और वह यह काम बहुत सहज कर दिया है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वनाम धन्य है ना प्रेमपुरी जी महाराज, जिन्होंने बंबई जैसी जगह में, जिसको लोग कहा करते हैं ये मोहमयी नगरी है, पर वास्तव में ऐसी है नहीं, ये तो अपनी दृष्टि है। हमने आपको पहले बतलाया था ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। शास्त्रों के अनुसार इसका नाम मुंबापुरी है, यंबा की पुरी है, यहीं से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। सागर है ना यहां पर मुंबई में, सागर तनया लक्ष्मी है, और सागर से धन्वंतरी उत्पन्न हुए, सागर से अमृत कलश उत्पन्न हुआ, और सागर से हलाहल बीज भी पैदा हुआ। सागर सब कुछ हुआ ना, पहले तो हलाहल बीज निकला, हलाहल बीज के बाद में एपिक्रम से जो है हलाहल बीज का संहार भगवान शंकर ने पान कर लिया। तो देखो ये जो बंबई है ना, ये जो है अज्ञानियों के लिए तो मोहमय नगरी है, अज्ञानी है, जो विषयी है, पामर है, उनके लिए सचमुच मोहमय नगरी है। परंतु आप जैसे हम लोग जैसे लोगों के लिए सद्भक्तों के लिए ज्ञानियों के लिए ज्ञान पिपासुओं के लिए मुंबापुरी है। अंबा का अर्थ है ब्रह्म विद्या। केनोपनिषद में जहां प्रसंग आता है इंद्र का संवाद, वहां पर उमा का अर्थ किया है ब्रह्म विद्या। उसी ब्रह्म विद्या के द्वारा इंद्र ने आत्मा का साक्षात्कार करके अमरता को प्राप्त किए। ऐसे इसी समझो कि मुंबापुरी में आज से 50 वर्ष पूर्व स्वनाम धन्य जिनका हम लोग जो है स्वर्ण निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं पधारे, और ऐसा कल्प तरु लगाया, इस कल्प तरु के नीचे बैठ करके श्रोता वक्ता दोनों ही अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तरु में वृक्ष में बड़ा भारी अंतर है। वृक्ष शब्द की व्युत्पत्ति ओ ब्रष्टु छेदने धातु है। ओ ब्रष्टु छेदने से वृक्ष बनता है जिसका छेदन हो, और तरु शब्द का अर्थ त्रि संप्लवन तारणयो धातु है, जो जो है दूसरे